0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, घर घर की आवाज, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला एपिसोड।

पांच तत्व की सुंदर काया, माया की है ये छाया, जिसको देख के मूर्ख मनवा तू इतना भरमाया। जड़ को जड़ ही रहने दे तू, चिंतन का धर ध्यान, जग में जिसका कोई नहीं है उसका है भगवान। यह पंक्तियां मैंने कविता संग्रह मन की मौज से ली है, जो स्वर्गीय पंडित प्रेमनाथ पटवारी मसरूर की अप्रकाशित काव्य रचनाओं का संग्रह है, जिसका श्रद्धा पूर्वक संकलन उनके मंझले पुत्र श्री राजेंद्र पटवारी ने किया है, जो स्वयं भी नाशाद के उपनाम से कई दशकों से कहानियां, नाटक और कविताएं लिखते आए हैं, और साथ ही एक मान्यता प्राप्त चित्रकार और मूर्तिकार भी है। कश्मीर वासी स्वर्गीय प्रेमनाथ पटवारी मसरूर एक ऐसे कवि और लेखक रहे हैं जिन्होंने अपनी साहित्य यात्रा पिछली शताब्दी के तीसरे दशक से भी पूर्व ही आरंभ की थी, और उनकी रचनाएं अविभाजित पंजाब शहर से प्रकाशित बहारे कश्मीर एवं रहनुमाए तालीम जैसी उस समय की प्रतिष्ठित उर्दू पत्रिकाओं में पहले आशिक सोपोरी के उपनाम से तत्पश्चात मसरूर कश्मीरी के उपनाम से उस समय भी प्रकाशित हो रही थी, जब जम्मू कश्मीर प्रांत में पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन की कोई सुविधा तक भी उपलब्ध नहीं थी। फना फिउल इश्क होना ही अंजामे मोहब्बत है, फना होकर ही आशिक नाम हम मसरूर पाते हैं। मसरूर कश्मीरी एक परिचय। मैं मसरूर कश्मीरी के कुछ शब्द मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने लिखा है, जम्मू कश्मीर प्रांत में वितस्ता नदी के तट पर कश्मीर के प्रसिद्ध राजा अवंती वर्मन के मंत्री श्री सोया पंडित ने जिस नगर को बसाया था वो अब सोपोर के नाम से प्रसिद्ध है। यहीं पर 18 मार्च 1909 ईस्वी को मैंने सूर्य की पहली किरण देखी थी। अभी जन्म के 14 मास भी नहीं बीते थे कि मेरे पिताजी स्वर्ग सिधारे। 14 वर्ष की आयु पूरी भी ना हो पाई थी कि माता के साये से भी वंचित होना पड़ा। खामोशी मुंतजर है बेजुबानी को जुबां कर दूं, हिले जिससे ये अर्शो फर्श पैदा वो समा कर दूं। अर्थात मेरी खामोशी इसी प्रतीक्षा में है कि अब मैं अपनी इस चुप्पी को तोड़कर अपने शब्दों से ऐसा वातावरण उत्पन्न करके इस पूरे ब्रह्मांड को हिला कर रख दूं। अपने इसी संकल्प को मन में लेकर संवेदनशील और काव्यात्मक मन के 1930 के दशक वाले कवि मसरूर कश्मीरी 1970 के दशक में एक बार पुनः सक्रिय जागृत हुए तथा अधिक अनुभव एवं पूर्णता के साथ सशक्त नजर आए। आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी, लेकर आया हूं वितस्ता गीतमाला का एक और अंक, जो आधारित है कवि स्वर्गीय पंडित प्रेमनाथ पटवारी, जिन्हें मसरूर कश्मीरी के नाम से भी जाना जाता है, के काव्य संग्रह मन की मौज पर। इस काव्य संग्रह को प्रकाशित किया है उनके सुपुत्र श्री राजेंद्र पटवारी नाशाद ने। आज सुनाता हूं उनके कुछ कविताएं और उनके साथ जुड़े गीत भी। बने रहिए मेरे साथ कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला एपिसोड 8 में। मसरूर कश्मीरी लिखते हैं और कविता का शीर्षक है भटके राही भूल न जाना। भटके राही भूल न जाना, मंजिल अपनी अपना ठिकाना, भटके राही भूल न जाना। जीवन का तो राज नया है, दुनिया का अंदाज नया है, सोज नया है, साज नया है, नगमाए दिल नवाज नया है, रूप नया है, रंगे जमाना, भटके राही भूल न जाना। पहले अब वो जमाना नहीं है, किस्सा नहीं है, फसाना नहीं है, गीत नहीं वो तराना नहीं है, सोने का कोई बहाना नहीं है, जाग के अब तो होश में आना, भटके राही भूल न जाना। देश की तो बुनियाद अलग है,

शेखे हरम है या ब्रह्मन है, इल्मो अलम की एक किरण है, जाने वतन है शाने वतन है, वक्त पर अपना फर्ज निभाना, भटके राही भूल न जाना। दुख की कहानी गम की हकायत, भूल के अब है तुझ पे इनायत, शिकवा कहाँ का कैसी शिकायत, भूल न जा माजी की रिवायत, जीनत रंगे चमन बन जाना, भटके राही भूल न जाना। प्रीत के गीत मसरूर सुनाना, बिछड़ों को फिर एक बनाना, आपस का यूं राबता बढ़ाना, सूरत गंगे जमन बन जाना, दुश्मन को नीचे दिखलाना, भटके राही भूल न जाना, मंजिल अपनी अपना ठिकाना।

प्रस्तुत है मसरूर कश्मीरी की एक और कविता, जिसका शीर्षक है प्रेम की नगरी बसा। निर्धन भेगर प्रेम पुजारी, प्रेम की नगरी बसा। प्रेम हो मन मंदिर की आशा, प्रेम हो जीवन की परिभाषा। सुंदर सपना प्रिय तमाशा, प्रेम का खेल रचा पुजारी, प्रेम की नगरी बसा। मोह के फंदे में मत आना, भूल न जा आदेश पुराना। धन दौलत पर क्या इतराना, निर्धन काम चला पुजारी, प्रेम की नगरी बसा। भूमि हो दुनिया से निराली, ईर्ष्या द्वेष से बिल्कुल खाली। दाता कई पर एक न सवाली, ऐसे देश में आ पुजारी, प्रेम की नगरी बसा। छाही हो हर सू हरियाली, प्रेम के पुष्प हो लाली लाली। झूमता हर्ष से मस्त हो माली, देख के बाग खिला पुजारी, प्रेम की नगरी बसा। अतः कितना है प्रेम सागर, प्रेम के मोती जिसके अंदर। डुबकी मार के ले आ बाहर, प्रेम मंदिर को सजा पुजारी, प्रेम की नगरी बसा। प्रेम की ज्योत से बाप बना ले, वर्षा प्रेम की फिर बरसा दे। ईर्ष्या द्वेष की आग बुझा दे, प्रेम के फूल खिला पुजारी, प्रेम की नगरी बसा। प्रेम की भूमि प्रेम का मंदिर, प्रेम की देवी बैठी अंदर। प्रेम के पुष्प ये सुंदर सुंदर, मसरूर तू भेंट चढ़ा, प्रेम की नगरी बसा, प्रेम की नगरी बसा।

लेता हूँ मसरूर कश्मीरी की एक और कविता जिसका शीर्षक है जाग संभल और सोच जरा। मूर्ख मन बहुत समझाया, तू जिद से अपनी बाज ना आया। दिन रात भटकता रहकर भी क्या पाया, क्या हाथ ही आया। जाग संभल और सोच जरा, क्या चाल चली है चौपट की। पासे बनाए वह भी नकली, खो बैठे हो हकीकत ही असली। सुलझे को फिर से सुलझाया, जाग संभल और सोच जरा। गैरों ही को है अपनाया, क्या सुंदर सपना दिखलाया। बुद्धि तक को है फुसलाया, अंधे कूप में लाके गिराया। जाग संभल और सोच जरा। जंगल में तो लाके बिठाया, पर काबू में कहां तू आया। बाजार जैसा शोर मचाया, तंग करके मार गिराया। जाग संभल और सोच जरा। राग द्वेष की ले सुरताल, वासना का फैलाया जाल। भूल गए हो देश और काल, मोह ममता ने यूं भरमाया। जाग संभल और सोच जरा। लोभ और मोह ने ऐसा जकड़ा, अहंकार ने कसकर पकड़ा। मूर्खता से बढ़कर क्या पाया, आजमोदा को फिर अजमाया। जाग संभल और सोच जरा। मसरूर जरा संभल तो जा, देख तू करने लगा है क्या। ना समझे को क्यों समझाया, केवल अपना समय गंवाया। जाग संभल और सोच जरा, जाग संभल और सोच जरा।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला एपिसोड 8। आज का वितस्ता गीतमाला आधारित है स्वर्गीय पंडित प्रेमनाथ पटवारी मसरूर कश्मीरी के काव्य संग्रह मन की मौज पर। लेता हूं अगली कविता मसरूर कश्मीरी की, जिसका शीर्षक है मूर्ख मनवा सारा जीवन व्यर्थ ही तूने गवाया है। कौन छुपा है तेरे अंदर जिसको देख न पाया है, मूर्ख मनवा सारा जीवन व्यर्थ ही तूने गवाया है। मूर्ख मनवा सारा जीवन व्यर्थ ही तूने गवाया है। पढ़ पढ़ लिख लिख समय बिताया, हाथ तेरे कुछ ना आया। शब्द के उल्टे अर्थ बताकर सोया फितना ही जगाया है। मूर्ख मनवा सारा जीवन व्यर्थ ही तूने गवाया है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाओं ने बरमाया है। असली मंजिल भूल गए हो, पुल पर डेरा जमाया है। मूर्ख मनवा सारा जीवन व्यर्थ ही तूने गवाया है। किसके हाथ को थाम लिया है, रहजन को रहबर बनाया। भटके राही होश में आओ, ये कैसा ढोंग रचाया है। मूर्ख मनवा सारा जीवन व्यर्थ ही तूने गवाया है। गलती का एहसास नहीं है, यूं ही शोर मचाया है। ठगनी माया ने देखो तो क्या क्या नाच नचाया है। मूर्ख मनवा सारा जीवन व्यर्थ ही तूने गवाया है। एन को गेन करने की खातिर तूने नुक्ता लगाया है। अपना लगाया नुक्ता मिटा दे, फिर एल को एन ही पाया है। मूर्ख मनवा सारा जीवन व्यर्थ ही तूने गवाया है। गली गली तो हांक लगाई, पर क्या खाक कमाया है। कूचे कूचे ठोकर खाकर फिर भी बाज न आया है। मूर्ख मनवा सारा जीवन व्यर्थ ही तूने गवाया है। मसरूर अब भी सोच जरा तू, क्यों उलझे को और उलझाया। डोर तो हाथ से निकल चुकी है, कटी पतंग को उड़ाया है। मूर्ख मनवा सारा जीवन व्यर्थ ही तूने गवाया है। मूर्ख मनवा सारा जीवन व्यर्थ ही तूने गवाया है।

पेश है मसरूर कश्मीरी की एक और कविता जिसका शीर्षक है ज्ञान है जीवन हमारा, ज्ञान ही पहचान है, ज्ञान बिना इंसान तो अनजान है नादान है। मुंह छोटा है बात बड़ी है, अनुभव झोली खाली पड़ी है, हां और नहीं में जंग छिड़ी है, निर्णय लीजिए शुभ घड़ी है, ज्ञान कथन कुछ शो है और ज्ञान का है दृढ़ निश्चय और सूरज सूरज कहते रहना अनुभव उषा का परिचय और जैसे बारात बिन दूल्हा के वैसे साधन के बिन है ज्ञान कार्य बिना कारण ही कहां बोले जो वो है अनजान जैसे दिया दिया कहने से कभी अंधेरी नहीं है छटती वैसे ज्ञान ज्ञान कहने से अविद्या भी कहां है मिटती काम क्रोध लोभ मोह चारों ही है नरक के द्वार मन में रखकर इनसे प्यार कैसे करें ज्ञान प्रचार सांप जो छोड़े केंचुली छोड़े ना देह का मान मन में राग द्वेष रखकर मुंह से कहे ज्ञान विज्ञान जहां भी कोलो फाल नहीं है इल्मो अमल में मेल नहीं है वहां तिलों में तेल नहीं है ज्ञानी बनना खेल नहीं है ब्रह्म सुख और विषयों के सुख में भूखेपन में और सीरी में मसरूर देख फर्क ही फर्क है रोशनी और अंधेरी में ज्ञान है जीवन हमारा ज्ञान ही पहचान है ज्ञान बिना इंसान तो अनजान है नादान है।

0: आप तो ज्ञानी है, अंतर्यामी है, बताइए ना महाराज।
1: क्या देवी?
0: कौन सी दुविधा आपके चरणों में इनको ले आई? किस चिंता में मगन है दोनों, क्यों आंखें पथराई? ये मरे हुए हैं या जीवित?
1: बस मरने ही वाले हैं देवी, इनका अंत निकट है।
0: तथा

मसरूर कश्मीरी के काव्य संग्रह मन की मौज से ये है आखिरी कविता। मसरूर कश्मीरी लिखते हैं, वक्त कथनी का गया, आया है करनी का समय, उठ खड़े हो बेघरो तुम घर बसाने के लिए, हर तरफ जुल्मों सितम का तुम निशाना बन गए, और क्या बाकी रहा अब आजमाने के लिए, तुम तहफुज किस से मांगोगे, तुम्हारा कौन है, बाढ़ ही मसरूफ हो जब खेत खाने के लिए, फूट आपस की बनी सारी तबाही की वजह, तुम गले मिल जाओ बिछड़ू को गले मिलाने के लिए, भूले हो सूरत पे तुम सीरत को पहचाना नहीं, रहजनों को आज तक रहबर बनाने के लिए, लोग जागे तुमने चादर ओढ़ी आंखें मूंद ली, वक्त ने तुमको झंझोड़ा था जगाने के लिए, जागो माजी से सबक लो हाल की इसलाह करो, सोचो मुस्तकबिल की अब बिगड़ी बनाने के लिए, छोड़ औरों का भरोसा मसरूर बिगड़ी खुद बना, उठो हकदारो लड़ो तुम अपना हक पाने के लिए, उठो हकदारो लड़ो तुम अपना हक पाने के लिए। ये था आज का वितस्ता गीतमाला एपिसोड 8, जो आधारित था काव्य संग्रह मन की मौज पर। लेखक थे स्वर्गीय पंडित प्रेमनाथ पटवारी जी, जिनको मसरूर कश्मीरी के नाम से भी जाना जाता है। ये संस्करण प्रकाशित करवाया उनके सुपुत्र राजेंद्र पटवारी नाशाद ने। हम गौरवान्वित है ऐसे महान लेखक के लिखे कविताएं पढ़कर और हमें मार्गदर्शन करने के लिए। ये FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की ओर से एक सादर भेंट। इसके साथ ही अब मुझे दीजिए इजाजत, और उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वितस्ता गीतमाला कार्यक्रम पसंद आएगा। आप हमें फीडबैक दे सकते हैं हमारे नंबर 705641310 पर। नंबर एक बार फिर 705641310 पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला एपिसोड 8, रिकॉर्ड एडिट निर्देशित व प्रस्तुत किया भारत सोपोरी ने। आज का कार्यक्रम आधारित था काव्य संग्रह मन की मौज पर, लेखक स्वर्गीय पंडित प्रेमनाथ पटवारी मसरूर। आभार राजेंद्र पटवारी नशाद का हम तक ये काव्य संग्रह पहुंचाने के लिए। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेशकश।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगा आर्ट्स रेडियो विदस्ता अंबाले का अपना रेडियो सुन दे रहो अपने पसंद के गाने।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विद अ स्टार, हम सफर जिंदगी का

नमस्कार। FM 90.0 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्तर, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो, और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त नरेश शर्मा। और लघु कथाओं की श्रृंखला में आपके लिए लेकर आया हूं एक और लघु कथा जिसका शीर्षक है अपने संस्कार। और दोस्तों, इस लघु कथा के रचनाकार हैं विकास भारतीय। ध्यान से सुनिए, रचना अपने आप में आपको बहुत कुछ कह देगी। किशोर वय उम्र के खासतौर से 16 से 20 साल की जो अवस्था होती है ना, बहुत नाजुक होती है। मन नई उमंग में चंचल हिरनी की तरह कुलांचे मार रहा होता है। इस अवस्था में शायद हार्मोनल चेंज की वजह से पहली बार विपरीत लिंगी आकर्षण पहली बार महसूस होता है। आपके इसी अलड़पने का फायदा उठाकर शिकारी उसका शिकार कर लेते हैं। ये कहानी एक ऐसी ही लड़की की है, इसको आप अपने मन से कुछ भी नाम दे सकते हैं। एक दिन की बात है, जब एक काम से मुझे दिल्ली जाना पड़ा तो मैंने तत्काल एक स्लीपर का टिकट लिया और ट्रेन से रवाना हो गया। और मेरे बैठने के ठीक कुछ देर बाद एक लड़की सलवार सूट पहने, गोरी सी, एक बैग हाथ में लिए हुए मेरी सीट के किनारे आकर बैठ गई। और मैं हाथ में लिए हुए एक मैगजीन को पढ़ रहा था। वो लड़की बार बार इधर उधर देख रही थी और बीच बीच में मुझे भी देख लेती थी। शायद वो सोच रही थी कहीं मैं उसे अपनी सीट से उतार ना दूं। मैंने मैगजीन रखते हुए पूछा, कहाँ जाना है? लड़की ने कहा, दिल्ली। अंकल आप कहाँ जाएंगे? मैंने कहा, मुझे भी दिल्ली जाना है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी सीट कहाँ है? उसने कहा, मेरे पास तो जनरल टिकट है। मैंने कहा, तो अभी टीटी आएगा तो टिकट बनवा लेना, शायद सीट भी कहीं ना कहीं तुम्हें वो दे दे। लड़की बोली, जी ठीक है, मैं बनवा लूँगी, लेकिन तब तक तो आप मुझे बैठने दीजिए। मैंने कहा, कोई बात नहीं, बैठी रहो। टीटी आया और स्लीपर का टिकट तो उसने बना दिया, किंतु सीट नहीं दी। बोला, कोई सीट खाली है ही नहीं। मैंने पूछा, आप क्या करती हो? लड़की ने कहा, कुछ नहीं। मैंने कहा, मेरा मतलब पढ़ाई से है। जी मैं 11वीं क्लास में पढ़ती हूँ। मैंने कहा, अच्छा, और आपके घर में और कौन कौन लोग हैं? लड़की ने कहा, मम्मी पापा भाई बहन सब हैं। थोड़ी देर बाद वो मोबाइल निकाला उसने और उसमें सिम कार्ड लगाया और किसी से बात की। उधर से कौन था, क्या बात हुई, ये तो पता नहीं, लेकिन लड़की ने अपना लोकेशन दे दिया कि फलाना स्टेशन पार किया अभी मैंने। मैंने कहा, पापा से बात कर रही थी तो स्टेशन से रिसीव करने के लिए। लड़की बोली, नहीं नहीं पापा तो मेरे गांव में हैं। मैंने कहा, फिर भैया रहे होंगे? नहीं नहीं मेरे वो थे वो। मैंने कहा, वो मतलब? मुझे तो नहीं लगता कि अभी तुम्हारी शादी हो गई है। लड़की ने कहा, जी नहीं नहीं अभी अभी शादी तो नहीं हुई, दो तीन दिन में हो जाएगी। मैंने कहा, ओ अब समझा, इसका मतलब प्रेम विवाह करने वाली हो। लड़की जी मुस्कुराने लगी। अच्छा लड़का क्या करता है? जी दिल्ली में नौकरी करता है और बोल रहा था कि मुझे भी नौकरी लगवा देगा, फिर हम दोनों मौज से रहेंगे। मैंने कहा, काफी स्मार्ट लड़का होगा। लड़की जी स्मार्ट तो है और बहुत अच्छे स्वभाव का भी है। मेरा माथा ठनका, मैंने अब उसकी कहानी जानने की सोची। इसके लिए उससे घुलना मिलना जरूरी था। तो स्थिति को भांपते हुए मैंने कहा, मैंने भी प्रेमी विवाह किया है। लड़की बड़ी उत्सुक से, वो आप भी भागकर शादी की हो? मैंने कहा, नहीं नहीं मैं जिस लड़की को पसंद करता था ना, वो लड़की भी मुझे भागकर शादी करने के लिए कह रही थी, लेकिन मैंने उसे कहा, नहीं हम तुमसे प्रेम तो करते हैं,
किंतु इसका मतलब ये तो नहीं कि जो माँ हमें अपने गर्भ में रखे, हमारे लैट्रिन बाथरूम को साफ करे, जो पिता हमें अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाए, बाजार में हमें खेलने के लिए खिलौने खरीद के दे, उनके प्यार को ठुकरा दो, जो सम्मान बनाने में इतनी उम्र गवाई, उसकी इज्जत मिनटों में रौंद दूं, उनका सर समाज में हमेशा के लिए झुका दूं। मैं शादी तो तुम्ही से करूंगा, लेकिन माँ बाप को मना कर। और फिर एक दिन माता पिता मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। मैंने कहा, वैसे आप जिससे प्रेम करती हैं उसे आपके घर वाले जानते हैं? लड़की ने कहा, जी जी जी नहीं, कोई नहीं जानता। मैंने कहा, आपने उसका घर देखा? तो उसके घर वाले आपको जानते होंगे? लड़की ने कहा, नहीं। मैंने कहा, फ्रॉड, तुम्हारे साथ फ्रॉड होने वाला है। लड़की ने, नहीं नहीं, वो ऐसा लड़का नहीं है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। मैंने कहा, एक बात बताऊं, जो प्यार करता है ना, सिर्फ करता है, जताने की कोशिश नहीं करता, किसी अनुचित टोकता और डांटता भी है, और ये तुम्हारे धन तुम्हारी सुंदरता से ही प्यार करता है। लड़की बोली, नहीं ये गलत बात है, वो ऐसा नहीं कर सकता। मैंने कहा, ठीक है, मर्जी तुम्हारी, पर मेरे पास एक उपाय है, परीक्षा लेना चाहोगी? लड़की ने बोला, क्या? मैंने कहा, उसे फोन करो और बोलो कि मेरे मम्मी पापा मान गए हैं मेरी शादी तुमसे करने के लिए, और वो भी आने के लिए कह रहे हैं वहीं दिल्ली में। मेरे मामा मामी भी हैं, वो भी आ जाएंगे। और बोले, आखिर एक दिन शादी तो करनी है, अभी तुम्हारी पसंद का है तो वहीं कर देते हैं, ताकि हम लोगों का मान सम्मान भी बना रहे और तुम लोगों की खुशी भी। इसलिए तुम भी अपने मम्मी पापा को बुला लो। लड़की ने वैसा ही किया, फोन लगाया, और लड़का इसकी सब बातें सुनकर आग बबूला हो गया। बोला, तेरे जैसी कितनी लड़कियां आई और चली गईं, तुम मुझे बेवकूफ बनाने आई हो, पागल समझ रखा है क्या? और डांटते हुए उसने फोन काट दिया। लड़की ने फिर से फोन लगाया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। मैंने कहा, अब उसका फोन कभी लगेगा भी नहीं, क्योंकि ऐसे लड़के अलग अलग लड़कियों के लिए अलग अलग सिम कार्डों का प्रयोग करते हैं। अब सोचो, घर से भागकर, और भागने का मतलब घर जा नहीं सकती, क्योंकि जब एक बार घर से भाग जाओगी फिर दोबारा घर तो जा नहीं सकती ना, और उनको अपनी परेशानी बता नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा उसके सिवा कोई और है भी नहीं। इसलिए वो तुम्हारे साथ अगर कोई बर्बरता करता तो तुम क्या करती? या फिर एक दिन छोड़कर तुम्हारा इस्तेमाल करके चला जाता, भाग जाता, तो क्या करती? जानती हो ऐसे में लड़कियां क्या करती हैं? ऐसे में लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं, और घर वालों को पता तक नहीं चलता। लड़की रोने लगी, अब मैं घर वापस कैसे जाऊंगी? मैंने अपने मम्मी पापा को धोखा दिया है, वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मैंने कहा, ओहो रोना नहीं, अभी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ा है, अब एक काम करो, अपने घर फोन लगाओ और मेरी बात करवाओ। लड़की ने फोन लगाकर मुझे दिया। मैंने कहा, हाँ भाई, मैं फलाना बोल रहा हूँ, और उसे अपना परिचय भी दिया और कहा कि अब सब ठीक है। लड़की के पिता लड़की से बात करने को कहते हैं, फोन मैंने लड़की को दिया कि लो बात करो। लड़की ने कहा, हाँ पापा, और इतना कहते ही वो दहाड़ मारकर रोने लग गई। पापा ने पूछा, बेटिया कहाँ हो तुम? हम सभी लोग बिना खाए पिए तुम्हें खोज रहे हैं, जल्दी घर आ जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जो हुआ उसे भूल दो, बस घर आ जा बेटी। लड़की ने कहा, पापा
बस थोड़ा सा बहक गई थी, पर अब ठीक हूं। ये भैया मिलकर मैं जल्दी ही घर आ जाऊंगी। और मुझे धन्यवाद देते हुए कहती है, आपने मुझे आज बहुत बड़ी गलती करने से बचा लिया। मैं उसे कहता हूँ, गलती इंसान से ही होती है। और सुबह का जो भूला वापस शाम को घर आ जाए, उसे भूला नहीं कहते। आराम से घर जाओ, सब तुम्हारी बाट जो रहे हैं। लड़की, अगले स्टेशन पर उतर कर दूसरी ट्रेन से अपने घर के लिए वापिस रवाना हो जाती है। ये संदेश है आज की युवा पीढ़ी को, जिन माँ बाप ने अपने खून से सींचा है ना तुम्हें, जिन्होंने अपने सारे सपने सिर्फ तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए लगा दिए हों, अपने खून को सिर्फ इसलिए लगा दिया हो कि तुम्हें पसीना तक ना आए, उनके संस्कारों को, उनकी इज्जत को इस तरह से किसी के बहकावे में आकर पांव के तले रौंदो मत। अपनी मर्यादाओं में रहो, अपना सम्मान करो, अपने माँ बाप का सम्मान करो। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

ए रहबर, बता दे किधर की तलाश है तुझे, मुझे लूटने के बाद किसको लूटना है। नमस्ते, मैं हूं रमेश मराठा।

गुलाबी मौसम में खुशबू की तरह महकते रहो, जानते ही मुस्कुराहट है तुम्हारे हुस्न का जेवर, यूं ही मुस्कुराते रहो। जब मोहब्बत तुमसे है तो ख्वाबों के आईने में हमारे बनकर रह जाओगे। आज रहने दीजिए ये गिले शिकवे, आज की शब हम न जाने देंगे, क्योंकि खुशबू

के साथ साथ शक्लें बेशक बदल चुकी हों, पर एतबार पहले ही की तरह अटल है। सोबतें सही रास्ता दिखाती हैं और मंजिल का पता भी बताती हैं, चाहे हम दूर तक चलते रहें, अपने पीछे कदमों के निशान छोड़ ही जाते हैं, यह सोचकर कि कोई मुझे ढूंढ तो ले।

हमसे अक्सर वाबस्ता रहती हैं दर्द की दास्तानें। तुम सुनकर क्या करोगी? जो लिखा है वो मिटाया नहीं जाता है। चुप हो जाते हैं जब जब बीते लम्हों में तुम्हें खोजने की कोशिश करते हैं। ख्वाबों के इस शहर में क्या ये सब कुछ मुमकिन है जो हम तुम्हें पा सकें?

भूजू चाहती बांटती रहे सरेआम अपनी खुशियों को नीलाम करके, पर इसके बावजूद चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रही, क्योंकि वो जीने का अंदाज जानता था।

जानता था वो दिल बहलाना, कहीं दूर पतंग की डोर पकड़कर खुले आकाश में पतंग को उड़ाने का हुनर जानता था। उसकी एक मुस्कान के लिए अपनी मुस्कुराहट फिदा करता था।

दोस्तों, आपको आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब चाहेंगे आपसे इजाजत। नमस्ते।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पेश है कार्यक्रम फिल्मी किस्से अंक 2, प्रस्तुतकर्ता दीपक कश्यप।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं आपका रेडियो दोस्त दीपक आपका स्वागत करता हूं आज के कार्यक्रम फिल्मी किस्से में। हम हर मर्तबा बात करते हैं किसी भी एक गोल्डन एरा मूवी के बारे में और जानते हैं उनके अनकहे किस्से और सुनते हैं उस फिल्म के गीत। आज हम बात करेंगे 1971 की सुपर डुपर हिट फिल्म के बारे में, जो कि गुलशन नंदा जी की एक नावल पर आधारित थी और इस फिल्म के निर्देशक थे शक्ति सामंत। लीड रोल में थे उस समय के सुपरस्टार राजेश खन्ना जी, आशा पारेख और उस समय के जाने माने विलन प्रेम चोपड़ा। और कहा जाता है इसी फिल्म में प्रेम चोपड़ा विलन के रूप में हिंदी सिनेमा में उभरे थे और ये फिल्म थी कटी पतंग। इस फिल्म के कंपोजर थे आरडी बर्मन साहब और गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने। इस फिल्म के किस्से जारी रहेंगे, फिलहाल सुनाता हूँ एक गीत किशोर कुमार जी की आवाज में।

गीत तो था बहुत सुहाना और हम बात कर रहे हैं फिल्म कटी पतंग की, जिसे रिलीज हुए 52 साल पूरे हो चुके हैं। हम सब ने इस फिल्म की लीड अदाकारा के रूप में आशा पारेख जी को देखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं शक्ति सामंत जो इस फिल्म के निर्देशक थे, उनकी पहली पसंद आशा पारेख नहीं थी और इससे पहले राजेश खन्ना जी के साथ आशा पारेख की बहारों के सपने फिल्म आई थी, जो कि इतनी नहीं चल पाई। अब आप यह सोच रहे होंगे कि आशा पारेख जी के पास यह रोल कैसे आया और कैसे उन्होंने इसे बाखूबी निभाया, ये भी आपको बताएंगे। इस किस्से को सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। उससे पहले सुनाता हूँ आपको मोहब्बत भरा गीत।

उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आया होगा। अब आते हैं हमारे फिल्मी किस्से पर। हम बात कर रहे थे किस तरह यह रोल आशा पारेख जी को मिला। कहा जाता है उस समय शक्ति सामंत जी की पहली पसंद शर्मिला टैगोर थी और सबसे पहले यह रोल उन्हें ही ऑफर हुआ था, लेकिन उस समय वह माँ बनने वाली थी जिस वजह से उन्होंने इस रोल के लिए मना कर दिया था। यह फिल्म उस समय के संवेदनशील विषय पर बनी थी जो था विधवा विवाह, और जब आशा पारेख जी ने यह रोल सुना तो इस वुमन सेंट्रिक फिल्म के लिए झट से हाँ कर दी, और इस तरह हमें मिली कटी पतंग की मधु। और भी किस्से बाकी हैं, उससे पहले सुनिए एक प्यारा सा गीत और लौटकर बताएंगे इस फिल्म के टाइटल ट्रैक का किस्सा।

गाना हुआ खत्म। अब आप लौट आइए उन फिल्मी किस्सों की तरफ। अगला किस्सा है इस फिल्म के टाइटल ट्रैक का। जैसे कि हम बात कर रहे थे, यह फिल्म बहुत संवेदनशील विषय पर बनी थी और राजेश खन्ना तब तक बहुत बड़े सुपरस्टार बन चुके थे। उसके बावजूद उन्होंने एक महिला प्रधान फिल्म में काम करने में जरा भी हिचक नहीं दिखाई। इस फिल्म का ज्यादातर दारोमदार आशा पारेख जी पर था, लेकिन फिल्म के सारे हिट गाने राजेश खन्ना जी पर फिल्माए गए थे। परंतु फिल्म का शीर्षक गीत जो कि लता जी ने गाया है, वह आशा जी पर फिल्माया गया था। आशा जी ने अपने एक इंटरव्यू में यह भी कहा है, जब भी मैं ये गाना सुनती हूँ तो मेरे दिल में हुक सी उठती है। आइए अब आपको यह गीत भी सुना देता हूँ।

अब हम लौट आए हैं कटी पतंग से जुड़ा एक और किस्सा लेकर। इस फिल्म के ना केवल गाने मशहूर हुए बल्कि इस फिल्म ने उस सदी के खलनायक और खलनायिका को भी पहचान दी और लोगों के बीच मशहूर भी किया, जिसके बाद उन्होंने खलनायक के रूप में कई किरदार निभाए। और साथ ही साथ इस फिल्म के एक गाने ने बिंदु जी को रातों रात हिंदी सिनेमा की आइटम गर्ल बना दिया। अब सुनाने जा रहा हूँ आपको वही गाना आशा भोसले जी की आवाज में।

ए पहचाना, मिले थे कभी उस रात को? डरो नहीं, बात है वो राज की, पर राज ही रहेगा। मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु।

रोज रात भर शहनाई बजती रही, मैं थी तुम थी और वो शर्माओ नहीं, घबराओ नहीं, कहूंगी किसी से नहीं। जानती हो मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? नीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु।

आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर फिल्मी किस्से एपिसोड 2। उम्मीद करता हूँ किस्से सुनकर आपको अच्छा लगा होगा और इस फिल्म के बारे में नई जानकारी मिली होगी। अब बढ़ते हैं इस कार्यक्रम के अंत की ओर। आपको सुनाते हैं एक और किस्सा जो कि जुड़ा है सचिन देव बर्मन जी से। कहा जाता है राजेश खन्ना जी की इससे पहले बनी फिल्म आराधना में बतौर संगीतकार सचिन देव बर्मन ने काम किया था, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने के कारण उनके बेटे राहुल देव बर्मन ने उस फिल्म के गानों की रिकॉर्डिंग करवाई। बाद में कटी पतंग में जब आरडी बर्मन को संगीत निर्देशन पर प्रयोग करने का खुला अवसर मिला तो उन्होंने कमाल संगीत बनाए जो कि लोगों को बहुत पसंद आए। अब इसी के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ एक और गीत के साथ। यह एपिसोड आपको कैसा लगा और अगले अंक में आप कौन सी फिल्म के किस्से सुनना पसंद करेंगे, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7056413010। आपसे जल्द मुलाकात होगी और भी फिल्मी किस्सों के साथ। सुनते रहिए FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी किस्से अंक 2, रिकॉर्ड एडिट और प्रस्तुतकर्ता दीपक कश्यप, लेखक एवं निर्देशन सेजल पुंज। ये थी 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विद अस्था की

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। आज मेरे साथ हैं FM 90 के को फाउंडर डायरेक्टर किरणी।
1: सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोताओं, आज हम आपके लिए लाए हैं एक खास मुलाकात, एक ऐसी काबिले एहतराम सुनहरी आवाज की मालकिन उद्घोषिका और एक बेहतरीन इंसान श्रीमती माधवी शर्मा जी के साथ बातचीत।
1: इनके साथ बात करेंगे एक लेजेंडरी वॉइस और एस ब्रॉडकास्टर जो देश विदेश में प्रख्यात है। वो हमारे मार्गदर्शक और प्रेरणा भी है। वो है आदरणीय रमेश मरहट्टा जी।
0: आइए सुनते हैं और श्रोताओं को सुनाते हैं ये वार्ता दो अनुभवी ब्रॉडकास्टर्स के बीच, और साथ ही हसीन नगमों से सबका मनोरंजन भी करेंगे।
1: प्रस्तुत है ये कार्यक्रम।
2: नमस्कार, आदाब। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं माधवी शर्मा, नाम ही काफी है, रेडियो की एक मायानाज उद्घोषिका। माधवी जी नमस्ते।
3: रमेश जी, कुछ शब्द नहीं आ रहे मेरे सामने जिनसे मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं कि आज की इस महफिल में आपने मुझे मेहमान बनाया है, और जितने विशेषण आपने मेरे लिए इस्तेमाल किए हैं, शायद मैं इसके काबिल हूं या नहीं हूं इसके बारे में मैं कह नहीं सकती।
2: कहाँ पैदा हुई आप?
3: मेरी पैदाइश जम्मू की है। मेरे पिताजी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में थे। उन्होंने BSc एग्रीकल्चर बापटला आंध्र प्रदेश से की थी और MSc एग्रीकल्चर कानपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से की थी, और वो जम्मू कश्मीर के पहले प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे।
2: अच्छा।
3: तो वहां पे तलातुलो फॉर्म था, वहां पे वो मैनेजर लगे थे, और मेरी पैदाइश उसी घर की है।
2: खेले कूदे
3: वहां पे। उसके बाद जैसे आपने कहा कि बचपन कहाँ बीता, मेरी दादी

0: वो सुखद आभास नहीं रहा।
1: रेडियो के साथ कब से जुड़ी आप?
0: मैं मात्र 6 वर्ष की थी रमेश जी, जब मैं रेडियो में मैंने आना शुरू किया, बच्चों के प्रोग्राम में। हमारे मोहल्ले में एक उद्घोषित थे आरपी साहनी, वो मेरे पिताजी के मित्र थे, तो कहने लगे आप माधवी को क्यों नहीं भेजते हो। तो पिताजी ने कहा अभी तो छोटी है तो उसे क्या भेजना, उनका भेजिए बच्चों के प्रोग्राम में। तो उनके आग्रह पर मैं 6 साल की उम्र से बच्चों के प्रोग्राम में आना शुरू किया। उस समय यहाँ बरगद का पेड़ होता था, अगर आपको याद है, आप भी हमारे बहुत पुराने हमारे सहकर्मी हैं। तो उस बरगद के पेड़ के नीचे बच्चों को इकट्ठा किया जाता था और प्रिंटेड स्लिप्स मिलती थी, और जो बच्चा उस स्लिप को बिना फंबल के पढ़ लेता था उसी को लाइव माइक्रोफोन पे आने की इजाजत होती थी, क्योंकि तब बच्चों का प्रोग्राम लाइव होता
1: था। हुआ करता था, बिल्कुल।
0: तो वो जो परीक्षा थी हमने पास कर ली और हमें पहली बार वो जो हमने स्लिप पढ़ ली और हमें उसके लाइव माइक्रोफोन पर बच्चों के प्रोग्राम में वो स्लिप पढ़ने का जो सुनहरी अवसर प्राप्त हुआ, तो वहां से मेरा ये सुनहरी सफर जो है वो शुरू हो गया।
1: धीरे धीरे फिर आगे बढ़ता
0: बढ़ती गई, लेकिन आई नेवर लुक्ड बैक। उस बच्चों के प्रोग्राम के बाद, बच्चों के प्रोग्राम में तो आती रही लेकिन आई नेवर लुक बैक। उसके बाद मुझे ये लगा कि जैसे मैं इसी के लिए बनी हूँ। अभी मैं बहुत छोटी थी, बच्चों के प्रोग्राम में आना शुरू किया। फिर एक समय आया कि बच्चों के प्रोग्राम में जो बच्चे थे वही प्रोग्राम को एंकर करते थे।
1: अच्छा,
0: तो उसमें एक मुझे चुना गया और एक मेरे साथ थे जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर महेश गुप्ता। तो हम दोनों भैया दीदी बनकर बच्चों का प्रोग्राम एंकर किया करते थे,
1: प्रेजेंट करते थे।
0: हाँ, वो भी एक बहुत ही सुंदर और अनूठा एक्सपीरियंस था।
1: उसके बाद बाकी जो आगे आप आवाज आपकी आई, कैजुअल अनाउंसर से शुरुआत हुई?
0: नहीं, कैजुअल अनाउंसर नहीं, उससे पहले जब बच्चों के प्रोग्राम से हम आगे निकले तो बाल कलाकार बने, ड्रामा वॉइस।
1: अच्छा,
0: उसमें हमने आना शुरू कर दिया। उसके बाद जब थोड़े से और आगे सीनियर क्लास में गए तो मेरी पसंद कार्यक्रम पत्रावली और आपकी पसंद कार्यक्रम, उसको हमने कंपेयर करना शुरू कर दिया, और वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम म्यूजिक ऑफ माय चॉइस।
1: अंग्रेजी पे आपकी पकड़ थी,
0: प्रोफिशिएंसी थी, उसमें भी थी पकड़। उर्दू आती थी कुछ, यहाँ के जो मेरे वरिष्ठ मेरे सहकर्मी थे उन्होंने बहुत प्यार दुलार के साथ मुझे सिखाया, ग और अज, इस सब का कहते ना वो आपके जेब, और वो सब कुछ उन्होंने मेरा दुरुस्त किया। पर वो कहते थे तुम्हारा इतना खराब नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बारीकियां जो है ब्रॉडकास्टिंग की, भाषा की, वो सिखाई। और वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम म्यूजिक ऑफ माय चॉइस, पत्रावली और आपकी पसंद कम से कम 16-17 साल तक मैं करती रही।
1: आपके दूसरे साथी कौन थे जो?
0: बहुत से थे।
1: अच्छा, अलग अलग।
0: शिव मोहन ने मेरे साथ वो प्रोग्राम किया। उसके बाद एक और थे हमारे यहाँ पे अनाउंसर, रविकांत के साथ भी कुछ देर के लिए किया, लेकिन मैं उस प्रोग्राम को करती रही। और तब तक मैं अपना कॉलेज शुरू कर चुकी हुई थी, और जब मैं ग्रेजुएशन मैंने कर ली रमेश जी, तो मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बलबूते पर MA इंग्लिश में सीट मिल गई। और
1: अच्छा।
0: मैं तो अपने इतनी प्रफुल्लित थी कि क्योंकि हमने लिटरेचर नहीं किया था तो हमें नहीं मिल सकती थी, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बेसिस पे हमें सीट
1: मिली। उसमें यही रेडियो काम आया?
0: रेडियो काम आया। मैं बहुत अच्छे ड्रामास में जाती थी, मैंने मंचन भी किया उनका, और एक डोगरी नाटक था जब मैं फाइनल ईयर थी अपने BSc होम साइंस में, तो हमारी एक मैम ने, जब क्या होता था कोई भी नोटिफिकेशन आती थी तो लड़कियों ने मेरा हाथ खड़ा कर देना इकट्ठा मिलकर, तो उसमें था हमारे हिस्से आया था डिस्प्ले टैलेंट में, यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम हुआ करता था, आज भी होता है।
1: जी।
0: हमारा उसमें नाटक आया डोगरी में।
1: अच्छा।
0: तो प्रोफेसर लाल हुआ करती थी, तो कहने लगी कौन कर सकता है डोगरी का, तो मेरी सहेलियों ने कर दिया, लेकिन मैं थोड़ी हिचकिचाहट से उठी और मैंने कहा मैम मुझे करने में कोई आपत्ति नहीं है।
1: भाषा पे पूरी पकड़ थी आपकी, डोगरी भाषा पर?
0: हाँ, घर में पूरा प्रयास होता था पिताजी, माता पिताजी का, कि डोगरी बोली जाए, क्योंकि वो आपस में बोलते थे। फिर भी आप ये कहें कि हम बहुत फ्लुएंसी से बोलते थे, नहीं बोलते थे। तो उन्होंने जब कहा कि, मैंने कहा मैम मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कुलीग्स तो चाहती है, मेरी सहपाठी तो चाहती है कि मैं करूं, लेकिन मेरी फ्लुएंसी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बहुत अफसोस की बात है, डोगरी होते हुए तुम्हें डोगरी नहीं आती, कैसे डोगरे हो तुम। मुझे वो बात दिल में चुभ गई। घर में मैं गई और पिताजी के साथ लड़ाई करने लगी, आपने हमें डोगरी क्यों नहीं सिखाया। उनका, मैं और तुम्हारी माँ तो डोगरी में ही बात करते हैं, तुम ही हिंदी और अंग्रेजी का गेयर लगाती हो। तो वो मेरे लिए एक चैलेंज था, बहुत रोई मैं, पर पिताजी ने कहा अगर सच्चे मन से आपको उनकी बात बुरी लगी है तो टेक इट अप एज चैलेंज। मैंने वो चैलेंज लिया, 17 पेज का रोल था, मैंने उसको एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा शीशा तुम्हारा जज है, जो तुम्हारी एक्टिंग है।

0: उसमें निखार लाएगा। शुरू हो जाओ बिना पीछे देखे। तो 17 पेज का मैंने अपने, मैं जानती हूँ और मेरा वो शीशा जानता है,
1: कितनी,
0: वो मिरर जानता
1: मेहनत,
0: है, वो मेहनत की मेहनत। और बहुत खुशी हो रही है मुझे बताते हुए अपने सुनने वालों को कि डिस्प्ले ऑफ टैलेंट में उस साल मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला।
1: ये स्टेज पे इसका मंचन हुआ।
0: स्टेज का मंचन होता है, यूनिवर्सिटी लेवल का एक प्रोग्राम होता है, कॉलेज लेवल का।
1: उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पे रेडियो में आप परमानेंट,
0: मैं बीएड कर रही थी, बीएड कर रही थी तो कैजुअल अनाउंसर का निकला, मुझे बुलाया गया, कैजुअल अनाउंसर का मैंने दे दिया, तो उसमें मैंने क्लियर कर लिया। तो उसके बाद बुकिंग्स मिलने लगी और मीन वाइल मेरे फादर ने मुझे जबरदस्ती बीएड करवाई। जब मैंने पूछा कि क्यों करवाना चाहते हो,
1: आपको हम टीचर बनाना चाहते हैं,
0: ना उन्होंने कहा जिंदगी में कोई भी परिस्थिति आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए जो नहीं चाहते हो, कोई भी बुरा समय आए, आपके हाथ में एक प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए। प्रोफेशनल डिग्री का कोई सानी नहीं है। बहुत मैंने उनसे, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ थी क्योंकि मैं एमए इंग्लिश नहीं छोड़ना चाहती थी, अभी 4 ही महीने हुए थे मुझे एमए करते, तो वो बहुत खुश थे कि इसकी प्रोफेशनल डिग्री हो जाए। उस वो जमाना कुछ और था रमेश जी, माँ बाप की कही बात पत्थर की लकीर हुआ करती थी और बच्चे उसको नकारते भी नहीं थे। करनी पड़ी बीएड, कर ली बीएड। और मैं एक्स कॉन्वेंट थी तो जब बात फैली कि एक्स कॉन्वेंट जो है वो बीएड कर चुकी है, क्योंकि मेरी मामी जी वहां पढ़ाती थी तो मुझे भी वहां बुलाया गया,
1: मौका मिला।
0: मैं नहीं चाहती थी पढ़ाना, लेकिन एक साल तक जब मैंने पढ़ाया बच्चे बहुत खुश थे, हमारी मैम बहुत अच्छी हैं, लेकिन मुझे लगता था मैं किसी और के लिए बनी हूँ। तो जब सिस्टर ने मुझे कहा, प्रिंसिपल मैम ने, कि आप 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, उसी समय मैंने अपना मन बना लिया और सिस्टर को कहा, सिस्टर मैं ये नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं रेडियो में मुझे कैजुअल अनाउंसर का जो प्रोग्राम है करने के लिए ज्यादा दिन देने पड़ते हैं, तो मैं यहाँ नहीं इतना समय दे पाऊंगी। उसके बाद सुभाष शर्मा जी मुझे कंपेयरिंग के लिए बुलाया करते थे खेल जगत कार्यक्रम के,
1: प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव जी, बिल्कुल।
0: हाँ, और बहुत उन्होंने मेरी भाषा में निखार लाने के लिए बहुत प्रयास किया और मैंने उनकी एक एक जो नुक्ता छीनी बिल्कुल मैंने सच्चे मन से उसको निभाया। बहुत से अच्छे लोग मिले इस दौरान और उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने, और वो सीख कर अगर आज आपको लगता है कि माधवी किसी मुकाम पर, वैसे तो नहीं पहुंची है, लेकिन हाँ मैंने पूरी मेहनत से, पूरे पैशन से अपने इस प्रोफेशन को निभाया है, क्योंकि लाइव माइक्रोफोन मेरा पैशन था। मुझे बहुत मौके मिले, मेरे फादर मुझे केएस बनाना चाहते थे, फॉर्म भी भरवाया उन्होंने और मैं कर भी लेती क्योंकि मैं बहुत मेहनती थी, और जो पिताजी चाहते थे, माताजी, वो तो मैं करती ही करती थी, लेकिन मैंने उनको ये नहीं कहा पहले कि मैं नहीं करूंगी। उसी दौरान क्या हुआ कि जब मैं यहाँ कैजुअल अनाउंसर आया करती थी तो परमानेंट अनाउंसर्स की पोस्ट निकली, मैंने उनको बिना बताए फॉर्म भर दिया और भगवान की कृपा से रिटर्न क्लियर हो गया, ऑडिशन क्लियर होगी। उसके बाद पद्मा सचदेव जी बॉम्बे से आई, इंटरव्यू था, इंटरव्यू क्लियर हो गया। यहाँ पे हुआ करते थे, मेहत्रा साहब हमारे स्टेशन डायरेक्टर हुआ करते थे, तो कुछ महीने के अंदर अंदर हमारी अपॉइंटमेंट लेटर्स आ गई। जब लेटर हाथ में आ गई तो अब क्या कहूँ पापा को, मैंने तो उनको कुछ भी नहीं बताया कि मैंने फॉर्म भरा था, मैंने रिटन टेस्ट दिया। जब रिटन टेस्ट देने आए, कहते आज क्या था, मैंने कहा पापा आज ड्रामा की रिहर्सल थी। मैंने कहा भगवान मुझे माफ करना, मैं माता पिता के साथ कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन अपने पैशन को नर्चर करने के लिए मुझे वो जरूरी था, वो झूठ नहीं था, वो अपने पैशन की तरफ जो यात्रा शुरू की थी उसका एक पड़ाव था। तो उसके बाद जब लेटर आ गई हाथ में तो मैं ऐसे झूमती झामती हाथ में लेटर ली हुए घर पहुंच गई, तो पिताजी कहने लगे आजकल क्या बात है माधवी, तुम्हारे पांव जो है जमीन पर नहीं लग रहे। मैंने कहा बात ही कुछ ऐसी है पापा। तो बड़े हैरान हो गए, कैसी बात है, मैंने कहा खुद देख लीजिए। जब उन्होंने खोला और देखा तो कहते ओ छे क्या किया तुमने, मैंने कहा क्यों पापा, कहते मैं तो तुम्हें केस आईएएस बनाना चाहता था। मैंने कहा पापा जो हाथ में आया, आप ही कहते हैं बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुशेस,
1: ले लो आप इसको,
0: जो हाथ में है उसमें तो करने दो मुझे, बाकी अगर किस्मत में होगा तो वो भी कर लेंगे। बट आई नेवर लुक्ड बैक, क्योंकि मुझे मेरी मर्जी का काम मिल गया था। उन्होंने फिर एक मेरे लिए अड़चन पैदा की कि हमारे मुआशरे में लड़की को काम नहीं करने देते, तो तुम कैसे कर सकती हो, मैं हेड ऑफ द फैमिली नहीं हूँ, तुमको तायाजी से पूछना पड़ेगा। मैंने कहा बात ही कोई नहीं, तायाजी तो मेरे बहुत बड़े मुरीद है। मैं भाग के गई, मैं कहा तायाजी, कहते क्या बेटा बड़ी खुश है। मैं कहा मेरी नौकरी लगी। कहाँ, मैं कहा रेडियो स्टेशन। अच्छा बहुत अच्छे। तो मैंने कहा तायाजी पापा नहीं मान रहे, कहते कि नहीं करती हैं लड़कियाँ। ओहो राम को मैं खुद मना लूंगा, मुझे पूरा विश्वास है तुम पर, तुम जाओ। और मरते दम तक रेडियो ट्रांजिस्टर उनके सरहाने के नीचे होता था।
1: रेडियो की यात्रा यहाँ से
0: शुरू हो गई। 6 साल की उम्र से जो शुरू हुई थी वो अगले पड़ाव तक पहुंच गई।
1: इस दौरान काफी कुछ करने को मिला,
0: काफी कुछ करने को मिला। एक बहुत सुखद यात्रा थी। और कहते हैं जब तुम किसी चीज को अपना पैशन बना लेते हो, इश्क जुनून की हद तक उसको तुम चाहते हो, फिर तुम अपना 100% देते हो।
1: किसी हद तक सफलता मिल ही जाती है,
0: मिल ही जाती है। और फिर कोशिश करने वालों की तो कभी हार नहीं होती।
1: हमारे रेडियो में जब अनाउंसर्स की बात करें तो शिफ्ट सर्विस होती है। हाँ। मतलब मॉर्निंग में, दिन में, इवनिंग, लेट इवनिंग, ये आपको करना पड़ा।
0: करना पड़ा। उसी दौरान मेरी शादी हो गई और हम 4 अनाउंसर्स सिलेक्ट हुए थे। उसमें मेरे जीवन साथी भी थे, मुझे नहीं पता था मेरे जीवन साथी बनेंगे तो। लेकिन वो केस की हुई थी उन्होंने, उनकी रिट चल रही थी तो उस दौरान डॉक्टर जैरथ हमारे स्टेशन डायरेक्टर थे, वो बहुत उन्हें चाहते थे क्योंकि वो उनके टीचर रहे थे। तो उनका जब तक तुम्हें वो नहीं मिलता यहाँ आ जाओ, यहाँ पे करो। तो वो सफर शुरू हुआ। लेकिन हमारी बरादरी में जो भी देखने आता था, डॉक्टर आता था, इंजीनियर आता था, प्रोफेसर आता था, लड़की तो पसंद है लेकिन नौकरी नहीं करवाएंगे। तो मैंने कहा पापा मैं ऐसे अपने साथी से जीवन कैसे काट सकती हूँ जो मेरी मेरे ही पैशन को दबाकर मुझे उस बंधन में बांधना चाहता है। मैं कहा मैं नहीं करूंगी, आप मान लीजिए शादी में उसी से करूंगी जो मुझे नौकरी करने देगा। तो वो बात चलती रही, हम काम करते रहे। इतने में जो मेरे हस्बैंड के जीजा जी थे, वो मेरे एल्डर ब्रदर के कुली सीनियर थे केंद्रीय विद्यालय में, उन्होंने कहा कि हम आपकी बहन से अपने ब्रदर ने
1: रिश्ते की बात
0: उन्होंने कहा। मैं मेरे ब्रदर ने कहा कि मैं बड़ा जरूर हूँ इससे, लेकिन मैं अपने पिताजी से बात करूंगी। पिताजी कहे ना मैं नहीं मानता, हमारा जात बरादरी, हम महाजन है, वो ब्राह्मण है, हम नहीं करेंगे। भैया ने कहा ठीक है पापा मत करो, आप मत करो, लेकिन आपको कोई ऐसा लड़का नहीं मिलेगा अपनी बरादरी में जो नौकरी करने देगा। ये नौकरी नहीं छोड़ेगी चाहे पति को छोड़ देगी, मैं अपनी बहन को जानता हूँ। तो पहले पापा नहीं माने, तो कुछ देर के बाद उनको लगा कि भगवान जो निश्चित करता होता वही है, ये बहाने बनते हैं, ये पहले से तय होते हैं। तो हमारी शादी हो गई श्री सौजन्य शर्मा जी से। मेरी डोगरी में निखार लाने के लिए उनका बहुत बड़ा एक योगदान है। वैसे भी उनके योगदान के बिना, मेरी सासू माँ के योगदान के बिना, मैं इतनी मुश्किल नौकरी नहीं कर सकती थी क्योंकि ये बहुत मुश्किल नौकरी थी। लेकिन कुछ ही महीने पहले मैंने अपनी सासू माँ को खोया है, उन्होंने मेरी पूरी नौकरी करवा दी और थोड़ी सी रह गई थी। तो मुझे कहती थी कि मुझे बड़ा शौक है जब तू रिटायर होगी तो मैं तुम्हें लेने आऊंगी। तो अपने बेटे को कहती बड़ा सा गुलाबों का हार बनाना ताकि मैं इसको वो पहना के लाऊं, इसने बहुत अच्छी नौकरी की है। जो भी इसको इनाम मिलता था पहले मेरी झोली में डालती थी। तो मैं कहती थी बेटा ये तुम्हारा इनाम है, तो कहती थी ना अगर मम्मी आप नहीं होते तो मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंच।
1: घर का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, खासतौर पर महिला के लिए, अगर वो कोई नौकरी।
0: हमारे अंदर एक मेरे और मेरी मदर इन लॉ के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, MOU। जब मैं घर में होंगी वो रसोई घर में नहीं आएंगी, जब मैं घर में नहीं होंगी तो वो रसोई घर में आएंगी, संभालेंगी। और बहुत देर तक उन्होंने संभाला, जब थोड़ी सी उनकी तबीयत खराब होने भी लगी पर फिर भी बहुत हिम्मती थी वो।
1: इस दौरान माधवी जी रेडियो आप सुना करते थे जब घर में रेडियो?
0: वो तो मेरे मेरे वॉशरूम में, मेरे किचन में रेडियो हमेशा रहा। मेरे बचपन में वो होता था, उर्दू सर्विस पे आता था।
1: थोड़ा सा वो रिसर्च हमने किया तमिल रिशाद प्रोग्राम के बारे में,
0: मुझे बहुत अच्छा लगता था।
1: उन दिनों बहुत
0: बहुत, और मेरे फादर कहते भी थे सो जाइए। मैं कहा पापा इसके बाद मैं उनसे मैंने उर्दू बोलनी सीखी थोड़ी। कहते ना ओनली अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड ब्रॉडकास्टर। तो वो सुनना जो बहुत जरूरी है एक अच्छा प्रसारक बनने के लिए।
1: बिल्कुल, बड़ी लाजवाब। और उर्दू पे पूरी उर्दू पे पकड़
0: और आवाज का उतार चढ़ाव बहुत कुछ सीखा मैंने।
1: अच्छा, आपकी नजर में रेडियो में अनाउंसर की कितनी अहमियत है?
0: बहुत अच्छा सवाल पूछा क्योंकि आप भी बहुत अच्छे वरिष्ठ उद्घोषक के रूप में आप सेवानिवृत्त हुए हैं और आपका एक मुकाम है, एक नाम है, आपको दुनिया जानती है। और आपने जब मुझे कहा कि मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं तो मेरे भी पांव जमीन पर नहीं थे कि रमेश मराठा अपने आप में एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है। तो
1: शुक्रिया।
0: उद्घोषक का जहां तक आपने सवाल है कि मुझे तो लगता है आप जितने भी बेहतरीन प्रोग्राम बना लेते हैं लेकिन जब तक जो उसका सेल्समैन है, सेल्स गर्ल है, वो उसे अच्छी तरह उसकी आइसिंग, केक की जो आइसिंग होती है वो करके आगे पेश ना करे तो वो प्रोग्राम जो है वो अधूरा रह जाता है, वो सजता समरता नहीं है।
1: आमतौर पे माना जाता है कि जब भी रेडियो स्टेशन कोई आता है तो वहाँ वो अनाउंसर को देखने के लिए, मिलने के लिए जरूर,
0: क्योंकि उनकी आवाज वो सुनते हैं और उनके मन में आंखों के जरिए उन्होंने एक छवि।
1: कोई इस तरह का कोई इंसिडेंट आपका अपना? कई होंगे, एक आध आप शेयर करेंगे हमारे सुनने वालों के लिए।
0: मैं अपनी ननद की बेटे की शादी पे अमृतसर गई हुई थी, तो अमृतसर के हमारे एक बहुत पुराने श्रोता हैं प्रेम सागर जी, वो हमारे आपका पत्र आपकी फरमाइश में बहुत खतो खिताब
1: हमारे साथ भी उन्होंने कई बार बात की बिल्कुल।
0: तो प्रेम सागर जी को पता नहीं उन्होंने ड्यूटी रूम में फोन किया तो किसने कहा वो छुट्टी पे हैं और अमृतसर गए हैं। प्रेम सागर जी मुझे फोन करने लगे और वहां मैं अपनी फैमिली फंक्शन में बहुत बिजी थी, तो मैंने अपने पतिदेव को कहा कि कहते माधवी बिना जाए तो काम नहीं बनेगा क्योंकि वो तुम्हारे बड़े आर्डेंट फैन है। तो मैंने उनको कहा प्रेम जी मैं अभी तो बिजी हूँ, आप बताइए आप कब मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं आ जाऊंगी, आप बताइए जब आप फ्री हैं, और जब मैं फ्री होंगी कि आपको सूट करता है वो हमने तय कर लिया। एक दिन थोड़ा सा विराम मिला फंक्शन से तो मैंने सौजन्य जी को लिया और हम चले गए। आप झूठ मानेंगे, उन्होंने जहां पे उनकी दुकान थी उन्होंने पूरे एरिया में झंडियां लगाई हुई थी और सबको बताया हुआ था कि माधवी आ रही है। मैं अपने आप में झेप गई और मैं समझ नहीं आई कि मैं कैसे फेस करूं, लेकिन इतना प्यार दुलार जब मिलता है ना तो आपको किसी हद तक रमेश जी लगता है कि आपने जो बचपन से मेहनत की है आज वो सपना साकार हुआ और वो मेहनत सार्थक हुई। हमें वो ढोल के साथ ढोल बज रहे हैं और हमें अपने घर तक ले गए प्रोसेशन में। घर में उनके वृद्ध उनके माता पिता थे और बहुत बड़ा उन्होंने एक मोमेंटो बनाया हुआ था। मोमेंटो पेश किया, अपनी अर्धांगनी से मिलाया, जलपान कराया और ये इस वादे से छोड़ा कि आप जब भी कभी आएंगे अमृतसर में मुझे जरूर मिलेंगी। अब वो अपने बेटे के पास फरीदाबाद भी जाते हैं लेकिन वहां से भी फोन करते हैं हर बार तुंदे फोन तुंदे गीत या फोन इन तुंदी फरमाइश में, क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत लोकप्रिय था। डोगरी संगीत का ये लाइव फोन इन प्रोग्राम था और बहुत सालों तक मैंने किया और बहुत संतुष्टि इससे प्राप्त हुई क्योंकि एक पारस्परिक संबंध बन जाता है अपने लिसनर के साथ।
1: सही कहा।
0: गुलजार जी बहुत अजीम शायर और एक अजीम हस्ती, वो आए हुए थे जम्मू में और मैं छुट्टी पे थी, मैंने लीव ली हुई थी, तो मुझे लियाकत जी का फोन आया, आप मिलना चाहती हैं। मैं कहीं पूछने की बात है, कहते आ जाइए। आप मानेंगे नहीं मैं कैसे पहुंची वहां पे यूनिवर्सिटी में और आमने सामने बिल्कुल उनसे बातचीत हुई, तो विश्वास ना हो कि हम
1: बातचीत कर रहे हैं।
0: बहुत बहुत ऐसी उनकी जो गाने हैं जो उनके गीत लिखे हुए हैं
1: उनका कहने का
0: वो अंदाज़ कोई सानी नहीं है, उनका अंदाजे बयान ही कुछ और है, तो बहुत अच्छा लगा। इसी तरह अपने आपको पता होगा कि मुझे बहुत सी कॉन्सर्ट्स करने का मौका
1: मिलता है।
0: बहुत सी कॉन्सर्ट्स मैंने अनगिनत कॉन्सर्ट्स की, एक तो भाषा हिंदी अंग्रेजी उर्दू डोगरी इस पे थोड़ी पकड़ थी और भाषा पे माँ बाप बहुत ध्यान देते थे, हमने गलती की नहीं हमारे पॉइंट्स कटने शुरू हो जाते थे और हम अगर पूरा दिन गलती नहीं करते थे हमें 10 पॉइंट्स मिलते थे, यानी 10-10 रुपए इकट्ठे होने शुरू हो जाते थे।
1: और सबसे खास बात ये रहती है कि आप अंदाजे बयां आपका कैसा है, वो आपके बैठे हुए हैं
0: आपके श्रोता हैं
1: उनके दिल को छू जानी चाहिए वो बात।
0: आपकी भाषा की शुद्धता, आपकी भाषा की स्पष्टता आपको अलग मुकाम दिलाती है और वही एक उद्घोषक का पहला एक प्रीरिक्विजिट होता है, उसकी आवश्यकता।
1: उच्चारण कहते हैं, उच्चारण कहते हैं। लाइव ट्रांसमिशन के दौरान कोई फनी इंसिडेंट जिसको आप याद करते हैं, हंसी आती है
0: लाइव ट्रांसमिशन के दौरान? हंसी भी आती है और
1: उसको रोकना भी पड़ता है,
0: हंसी को रोकना पड़ता है और कई बार आपकी सिट्टी पिट्टी भी गुम हो जाती है।
1: जी बिल्कुल।
0: कई बार क्या होता है कि आप लाइव ट्रांसमिशन चला रहे हैं और कोई ऐसा प्रोग्राम जो हमें पहले टेप्स मिला करती थी,
1: बिल्कुल
0: आपको याद होगा टेप हमें मिली और उसका कार्टन जो था उसके ऊपर लिखा था ये फीचर है
1: इसमें है,
0: लेकिन हम पहले टेप चेक कर लेते थे कि उसमें क्या है,
1: ये जरूरी होता
0: हाँ,
1: है
0: तो कुछ 2-3 मिनट पहले क्योंकि बड़ी
1: भागदौड़ होती है,
0: भागदौड़ होती है। और ट्रांसमिशन में उस दिन बहुत बिजी ट्रांसमिशन थी, मैंने 2-3 मिनट लगाया तो जो फीचर उस पे लिखा गया था कार्टन पे वो अंदर नहीं था। अब क्या किया जाए, फोन भी नहीं होते थे ऐसे जो आजकल काम करते हैं, आपके पास मोबाइल फोन तो थे ही नहीं, क्या किया जाए। अब अनाउंस नहीं मैंने अभी तक किया हुआ था, सुबह समरी में हुआ होगा तो मैं कह नहीं सकती, सेकंड ट्रांसमिशन की बात कर रही हूँ। फीचर इतने में मैंने 1 मिनट भाग के, आपको याद होगा कि मेरा जो प्राइमरी की हमारा स्टूडियो है और लाइब्रेरी के साथ
1: बिल्कुल
0: है। तो मैंने अभी पहला वो प्रोग्राम चल रहा था भाग के गई, उसको कहा कि ये कार्टन अलग है और उसमें वो फीचर नहीं है जो मुझे बैसाखी पे चलाना है, उसको मैं कह के आ गई। तो मैंने कहा आप टाइम लीजिए, फीचर कहते 25 मिनट का, मैंने कहा टाइम लेके मुझे दे डालिए, तब तक
1: अपने
0: लाइव अपने लिसनर्स के साथ जुड़ी रही और उनको अपनी अगली ट्रांसमिशन के प्रोग्राम्स के साथ अवगत कराती रही कि आप हमारी अगली ट्रांसमिशन में ये प्रोग्राम सुनेंगे। अगले दिन के कुछ खास प्रोग्राम जो उनके बड़े पसंदीदा कार्यक्रम है उनके बारे में बताती रही। इस तरह से मैंने 5 मिनट
1: पूरा
0: किया, थोड़े से हमारे जिंगल्स होते हैं उनको चलाया और कुछ ऐसे कुछ हमने लिखे होते हैं जो हम अपने श्रोताओं के साथ साझा कर सकते हैं। 5 मिनट का समय बहुत होता है ब्रॉडकास्टिंग में, लेकिन भगवान की दया से वो हो गया और वो कार्टन चेंज होके प्रॉपर जो फीचर चलना था वो जब आ गया तो बैसाखी का वो फीचर एयर पे मैंने दे दिया।
1: ये होता है अनाउंसर की जो कहते हैं ना हाजिर जवाबी और उसके
0: प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट,
1: बहुत जरूरी है। एक गाने की गुंजाइश है आपकी पसंद का कोई गाना?
0: गीत तो बहुत पसंद है मुझे, गीत संगीत ही मुझे इस स्टेशन में लेके आया, प्रसारण में लेकर आया, क्योंकि मौसिकी में म्यूजिक में मुझे बहुत इंटरेस्ट था। लता मंगेशकर की आवाज में एक बहुत ही प्यारा गीत है फिल्म खामोशी का, हमने देखी है।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये गाना हम आपको सुनाएंगे।
0: बहुत बहुत शुक्रिया।

0: आपका गॉडफादर कौन है रेडियो में?
1: गॉडफादर तो मैंने किसी को नहीं बनाया, सीखा सबसे, आप ही समझ सकते हैं। आपकी आवाज में जो एक उतार चढ़ाव था ना, उसकी भी मैं बहुत कायल थी। हमारे यहाँ अनाउंसर्स भी बहुत अच्छे थे, महमूद अहमद का नाम सुना होगा।
0: जी बिल्कुल।
1: फीचर प्रोग्राम दरीचे मैंने 23 साल तक किया, रमा बेटी का रोल था उसमें और गाना भी गवाया जाता था मुझसे। लेकिन इतने दिग्गज लोगों के साथ काम करने का जो
0: ड्रामेटाइज हुआ करता था,
1: दिग्गज लोगों के साथ काम करने का जो आभास था सुखद, वो मैं बयान नहीं कर सकती। 23 साल तक इट वाज लाइक अ फैमिली टू मी। हमने हर हफ्ते मिलना, पहले महमूद अहमद जी स्क्रिप्ट लिखा करते थे, उनके बाद जी एस परदेसी जी कितने साल लिखते रहे, के सी मन्हास, संजीव शर्मा, इन सब ने स्क्रिप्ट लिखे, लेकिन वो प्रोग्राम चलता रहा 23 साल तक। और वो क्या था, सामाजिक कुरीतियों पर आधारित प्रोग्राम था, जो समाज में कुछ ऐसी कुरीतियां अपना सिर उठाती थी, उनको कैसे दूर किया जाए, उनसे कैसे निपटा जाए, उस पर एक फीचराइज पारिवारिक रूपक हुआ करता था दरीचे। आपका पत्र फरमाइश कम से कम 15 साल तक किया, 18 साल तक प्रोग्राम किया, पत्रावली और आपकी पसंद 1.5 दशक से ज्यादा सालों तक किया। हमारे विविध भारती में कमल जी की मैं बड़ी कायल थी, कमल शर्मा जी बहुत अच्छा बोलते थे, भाषा पे उनकी पकड़ थी, उतार चढ़ाव भाषा का और लहजा उनका बहुत बेहतरीन, बेहतरीन प्रसारक थे, बेहतरीन उद्घोषक थे।
0: उनको आप लगभग सुना करते थे?
1: मैं सुना करती थी।
0: माधवी जी, अनाउंसर के लिए छूट होती है जब वो प्रोग्राम प्रेजेंट करता है, कोई भी प्रोग्राम हो, आपको ये छूट मिलती थी?
1: बिल्कुल सही कहा, स्काई इज द लिमिट। और ये एक अनाउंसर इंडिविजुअल के हाथ में है कि वो जो उसको 30 मिनट या 15 मिनट मिले हैं उनका वो कितना अच्छा इस्तेमाल कर सकता है, ताकि एक एक शब्द जो है सीधे श्रोता के दिल तक पहुंचे, माइक से दिल तक। और जो ये कहते हैं ना, सीक्रेट को समझ जाता है, राज को समझ जाता है,
0: वही एक सफल अनाउंसर की श्रेणी में आता है।
1: मैं तो नहीं जानती कि मैं कितनी सफल हुई हूँ अपनी इस यात्रा में, लेकिन अपनी तौर से भरसक प्रयास किया कि श्रोताओं की उम्मीदों पर खरी उतर सकूं।
0: लिसनर्स का फीडबैक किस तरह मिलता था आपको?
1: कुछ लोग आपको मैं बताना चाहूंगी, हमारे एक नाबीना थे, आजकल वो गांधीनगर कॉलेज में लगे हैं और बच्चों के प्रोग्राम में आया करते थे, मुझे उनका नाम भूल, राहुल
0: जी,
1: आजकल वो असिस्टेंट प्रोफेसर म्यूजिक के हैं और बच्चों के प्रोग्राम में आया करते थे और बहुत अच्छा गाते थे। हाँ, जितना हम उनको उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं, हमने कभी उसमें हिचकिचाहट ना दिखाई है और ना हमसे इसकी अपेक्षा की जाती है, क्योंकि बच्चों से मुझे बहुत प्यार था। बच्चों का प्रोग्राम मैंने बहुत, 1988 में मेरी नौकरी लगी, उससे पहले से मैं प्रोग्राम किया करती थी और 2002 तक मैं करती रही। आप समझ लीजिए कितने सालों तक मैंने ये प्रोग्राम, 22-23 साल तक मैंने ये प्रोग्राम किया। तो
0: और बच्चों के प्रोग्राम को प्रेजेंट करने की खास बात ये रखनी पड़ती है कि आपको बच्चा बनना पड़ता है,
1: आपको बच्चे की लेवल तक आना पड़ता है,
0: तब जाके
1: बात बनती है। और बहुत लोकप्रिय प्रोग्राम था और मैं उसे बहुत एंजॉय करती थी और लाइव प्रोग्राम हुआ करता था, रिकॉर्डिंग तो बाद में शुरू हुई।
0: राहुल जी बात कर रहे थे,
1: राहुल जी बहुत अच्छा गाते थे, लेकिन मैंने उनको ये कहना शुरू किया, पहले मैंने उनको ये कहती थी कि आपकी जो एक कमी है, आपने क्या उसको ठीक करने की कोशिश की? तो कहते थे बहुत देर से चल रहा है, चलिए देखते हैं। लेकिन कुछ जन्मजात ऐसे विकार होते हैं जो नहीं ठीक होते, पर बेहतरीन इंसान था वो। तो मुझे आप मानेंगे, मैं एक बार बच्चों के प्रोग्राम के बाद उसकी पढ़ाई शुरू हो गई, वो हमसे अलग हो गया, परेड कॉलेज में मैं किसी प्रोग्राम में गई हुई थी, तो मुझे वहां पे उन्होंने गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया हुआ था। मैं बैठी हुई थी तो किसी से बात कर रही थी, तो राहुल अपना ऊपर गाना प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन मुझे तब तक पता नहीं था ये राहुल है। अगर बातचीत करते करते अचानक वो ऊपर से स्टेज से कहता है, माधवी मैम बैठी हुई है हॉल में। तो मैंने कहा हाँ मैं माधवी हूँ। कहता मैम आपने मुझे पहचाना नहीं, जैसे उसने कहा, मैं कहा आप राहुल हो? कहता मैं राहुल हूँ। तो मुझे लगा, और उसको कहना मैम आज मैं आपकी पसंद का ही कुछ पेश करूंगा, क्योंकि बहुत सालों के बाद मैंने, रेडियो में तो मैं आपको सुनता रहता हूँ, लेकिन ऐसे आपकी आवाज मैंने बहुत देर के बाद सुनी। जितना दुलार प्यार वो बच्चे करते, तो मैंने कहा तुम वो बहुत अच्छी गाते हो, मेहदी हसन की गजल, प्यार भरे दो शर्मीले नैन।
0: क्या बात है,
1: क्या खूबसूरत, उसने उसकी गजल की अदायगी का कोई सानी नहीं, कोई विकल्प नहीं है। और मुझे इतनी खुशी हुई, एक दिन उसका फोन हुआ, कुछ साल पहले आया, तो कहने लगा, मैंने उसका नंबर सेव किया, मैं राहुल क्या हाल है, कैसे याद किया है, कैसी जिंदगी गुजर रही है? कहता मैम आपके बलबूते पर बहुत अच्छी गुजर रही है। मेरा तो इसमें कोई योगदान नहीं है। मैम मुझे आपको कुछ बताना है, मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्लियर किया है,
0: क्या बात है,
1: नेट क्लियर किया पहले मैंने, अब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर लग गया हूँ गांधीनगर कॉलेज में। मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरा अपना बच्चा जैसे किसी मुकाम पर पहुंच गया है, और मैंने जाके भगवान को इतना शुक्रिया अदा किया, इतना ग्रैटिट्यूड पे किया कि एक बच्चा जिससे आपने कुछ ले लिया था उसको बहुत कुछ दे दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं भगवान कुछ अगर लेता है बहुत कुछ देता भी है, उसी चीज के लिए आपको शुक्रगुजार होना चाहिए।
0: माधवी शर्मा को कभी किसी प्रोग्राम को पेश करने में कोई चैलेंज आपने एक्सेप्ट किया, हाँ मैं करूंगी और ये हो गया?
1: हाँ, इस दौरान बहुत से दिग्गजों को भी मैंने उनको होस्ट किया, चाहे वो उस्ताद अमजद अली खान हो, पंडित शिव कुमार शर्मा हो, बहुत से, आपको पता हमारे यहाँ जितेंद्र सिंह आए, राधिका चोपड़ा, सीमा अनिल सरोज, बहुत से,
0: यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर वगैरह।
1: प्राइम मिनिस्टर की आपने बात की तो मैंने नरेंद्र मोदी जी की
0: कई बार,
1: तीन बार मैंने लाइव किया है उनको होस्ट स्टेज पे, और पांच बार उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मैंने होस्ट किया है। वो तो एक अपने आप में अलग एक अनुभूति होती है। लेकिन जब मुझे जम्मू से श्रीनगर बुलाया गया, एक उनका पिछली बार इसलिए वो श्रीनगर आ रहे थे, तो मुझे अटल डुल्लू जी के सेक्रेटरी ने फोन किया कि मैं चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से बात कर रहा हूँ और डुल्लू साहब आपसे बात करना चाहेंगे। माधवी जी कैसी हैं आप? मैंने कहा सर बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। कहने लगे आपको श्रीनगर आना होगा नेक्स्ट फ्लाइट से। मैंने कहा सर क्या हो गया? मुझे पता था मोदी जी आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप होस्ट करो। मैंने कहा सर मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत मान रही हूँ कि आप मुझे इस काबिल समझ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक प्रोसेस है, मेरी अवेलेबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी कि मैं उनके परमिशन के बिना नहीं आ सकती, तो आप हेड ऑफ द ऑफिस से बात कीजिए और मेरी अवेलेबिलिटी। उन्होंने उसी समय किया, तो फिर मुझे कहा गया कि हमें दिल्ली से लेनी है परमिशन, दिल्ली से भी ले ली गई और मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग श्रीनगर पहुंच गई, क्योंकि मैंने जम्मू में भी उनके बहुत किए थे, जम्मू में भी मैंने उनको होस्ट किया था। तो वहां जाकर ये लगा कि यहाँ भी बड़े बेहतरीन अनाउंसर हैं, इतनी उनकी अच्छी आवाज है, आवाज में उनकी इतनी खनक है,
0: जी, जी, जी।
1: आपने इतने बेहतरीन प्रोग्राम अपने टाइम में किए हुए हैं, कोई ऐसा लीडर नहीं होगा जिसको आपने होस्ट ना किया हो। लेकिन वहां जाके इतना जरूर तुम्हें महसूस होता है कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो, इसे ऐसा सुनहरी मौका मिला है,
0: ये बहुत बड़ी बात है,
1: और बहुत अच्छे से वो हो गया। तो आप सच मानेंगे ये बात मैं अपने श्रोताओं से आज पहली बार साझा कर रही हूँ। जैसे ही प्रोग्राम खत्म होने को था तो मैंने कहा प्रधानमंत्री जी आपकी गरिमा में उपस्थिति और आपके ओजस्वी मार्गदर्शन के लिए हम आपके तहे दिल से आभारी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सच मानिए प्रधानमंत्री जी मेरे से तीन कुर्सी दूर थे, मेरी ओर मुड़े और कहने लगे बहुत अच्छे, ऐसे किया और आगे से अंगूठा किया, बहुत अच्छे। मैं एकदम से हिल गई कि एक प्राइम मिनिस्टर को क्या लगा कि वो किसी होस्ट को ऐसा बोले।
0: जी बिल्कुल,
1: लेकिन सही कहा आपने। अपने गुरु महाराज का शुक्रिया भी मैंने अदा किया अपने आंखें बंद करके कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस काबिल नहीं थी लेकिन आपने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। मैंने एकदम से ऐसे किया, जब प्रधानमंत्री जी चले गए, चीफ सेक्रेटरी, सारे आईएएस ऑफिसर सब आके गले लगा रहे, कहते ये ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि किसी होस्ट को प्रधानमंत्री जी ने किया, तो मुझे लगा कि मुझे रिटायरमेंट से पहले सबसे बड़ा तोहफा जो है वो मिल गया है।
0: जम्मू रेडियो के तीन ऐसे पसंदीदा कार्यक्रम बताइए जो आपको बेहद पसंद है, जो आप नहीं करते हैं कोई और करता है।
1: अच्छा, ये तो बहुत मुश्किल सवाल हो गया।
0: जिसको आप प्रेजेंट नहीं करते हैं कोई और प्रेजेंट करता है।
1: अच्छा जी, एक तो आप जो करते थे कठुआ स्टेशन से, वो बहुत मेरा पसंदीदा कार्यक्रम था,
0: यादें बन गई गीत।
1: यादें बन गई गीत बहुत अच्छा प्रोग्राम था, और उससे भी मैंने बहुत कुछ सीखा कि एक अनाउंसर को अगर अपने लिसनर की जो कैप्टिविटी, उसको कैप्टिवेट करना है, उसके इंटरेस्ट को कैप्टिवेट करना है, उसकी तवज्जो हासिल करनी है, तो कैसे करनी है वो आपके हाथ में है। इसके अलावा हमारे यहाँ से ड्रामा निगार बहुत अच्छे हुए हैं, महमूद अहमद जी की लिखी झलकियां और उनकी पेशकश तो बहुत अच्छी थी, रीटा यूसुफ बहुत अच्छी अनाउंसर हुआ करती थी और बहुत अच्छा पंजाबी प्रोग्राम करती थी, मैं उनकी आवाज की बहुत कायल थी और बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा। उनके पंजाबी प्रोग्राम इतने मकबूल थे, मैं कहा करती थी कई बार मजाक से ही, अगर आप इनको एलओसी पर खड़ा कर दें तो पाकिस्तान और भारत में जो भी कुछ भी कमियां हैं,
0: खटपट
1: है, वो दूर हो जाएगी। ये तो मजाक की बात थी, लेकिन उनके चाहने वाले अक्रॉस द बॉर्डर बहुत लोग थे। हम पत्रावली और आपकी पसंद किया करते थे रमेश जी, मैं और नितिश पत्रावली राखी प्रसन्न जो युवानी सर्विस पे आता था, हमें पाकिस्तान से गिफ्ट्स आई पैक होके, वहां से हमको पार्सल्स आए। तो आप जान सकते हैं कि ये जो दूरियां हैं ये औरों ने बनाई है, आपस में कोई दूरी नहीं है, हमारा वही एक तरीकाकार है, हमारे रिवाज वही हैं, सब कुछ एक है
0: और आवाज की कोई सरहद नहीं।
1: आवाज की कोई सरहद नहीं, बिल्कुल सही कहा, आवाज की कोई सरहद नहीं है।
0: बिल्कुल, ये तो दो प्रोग्राम हुए, तीसरा प्रोग्राम बताइए।
1: तीसरा प्रोग्राम आप हमारे यहाँ से दरीचे प्रोग्राम जो मैं तो खुद भी थी, लेकिन पेश करने वाले महमूद अहमद जी थे, मैं उनकी भी बहुत कायल थी, बहुत अच्छा प्रोग्राम करते थे। सुभाष शर्मा जी खेल पत्रिका कार्यक्रम करते थे, और वो पत्रिका कार्यक्रम क्या होता था, 9:30 बजे टेप चलनी होती थी, 8 बजे वो जागते थे उस अपनी नींद से, क्योंकि काम करके फिर 8 बजे
0: उन्होंने 5-5, 10-10 मिनट करके वो कट्स लाते थे।
1: पर वो जो उनमें प्रोफेशनलिज्म था,
0: कमाल का,
1: जो वो जो उनकी एंकरिंग थी, जो उनकी प्रोडक्शन थी, जो उनकी आवाज का इस्तेमाल था, उसका
0: लाजवाब था। एक गाना आपको हम सुनवाना चाहेंगे, कोई आपकी चॉइस। लता जी का तो गाना आपने सुनवाया खामोशी फिल्म से।
1: एक और गाना है बहुत पसंद है मुझे मुकेश की आवाज में, फिल्म आनंद का।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: वो कौन सा गाना है?
0: मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने। क्या बात है, ये गाना हम आपको सुनवाते हैं।
2: मैंने

0: माधवी जी, हिंदू फिलॉसफी में पुनर्जन्म की बात होती है। अगर आपको दूसरा जन्म मिलता है तो क्या बनना चाहेंगे आप?
1: ये सवाल तो आपको, इसका जवाब आपको पता है मैं क्या दूंगी। मैं एक पुनर्जन्म क्या जितने भी जन्म दोबारा लूं, मैं हर जन्म में एक प्रसारक ही बनना चाहूंगी। आवाज की दुनिया की रेडियो सखी माधवी ही बनना चाहूंगी। ये हाँ। मेरे दिल के बहुत करीब था, है और रहेगा, क्योंकि ये मेरा इश्क, जुनून, मेरा पैशन था, है और रहेगा।
0: इसके अलावा कोई ऐसा इंसिडेंट बताइए रेडियो के दौरान जिसको आप कभी भूल नहीं पा रहे हैं, रेडियो अपनी सर्विस के दौरान।
1: हाँ, हमारे यहाँ से 10 साल पहले की बात मैं कर रही हूँ। आकाशवाणी एनुअल अवार्ड्स आयोजित हुए थे जम्मू में, उसको होस्ट करने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ। डीजी साहब आए हुए थे, डीडीजी आए हुए थे चार, तो वो लोग बहुत डरे हुए सहमे हुए थे कि जो पिछली बारी का आकाशवाणी एनुअल अवार्ड था वो कोलकाता में हुआ था, तो कुछ इतना उसमें कुछ खामियां रह गई थी। तो जब प्रोग्राम हो गया तो ब्रिजेश्वर सिंह हुआ करते थे डीजी, उन्होंने गले से लगा लिया। उन्होंने कहा कि आज मैं इतना खुश हूं माधवी, मैं बता नहीं सकता आपको, क्योंकि हम बहुत डरे हुए थे और प्रोग्राम इतना स्मूथ गया। मेरे साथ रविकांत थे, वो हिंदी में कर रहे थे, मैं अंग्रेजी में कर रही थी। गुलाम नबी आजाद तब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, तो बहुत जोरावर में ये प्रोग्राम हुआ था, बहुत दुनिया थी, बहुत बेहतरीन तरीके से ये प्रोग्राम हुआ। और जो मुझे संतुष्टि मिली कि जो लोग मुझसे तवक्को रखते थे उस पर मैं खरी उतरी, और ये प्रोग्राम मैं कभी भुला नहीं पाऊंगी।
0: ये ऐसा प्रोग्राम है जिसको आप कभी भूल नहीं पाएंगे,
1: क्योंकि आकाशवाणी एनुअल अवार्ड्स का जो एक दर्जा है वो अपने आप में बहुत ऊंचा है, और किसी भी स्टेशन के लिए उसे सफलता से होस्ट करना
0: ये बहुत बड़ी बात है, एक चैलेंज भी है।
1: चैलेंज था।
0: आपका मनपसंद उद्घोषक कहीं से भी?
1: रमेश मराठा जी तो मेरे मनपसंद उद्घोषक हैं, कमल शर्मा जी की मैंने बात की, उसके बाद एक और विविध भारती के अनाउंसर हैं अमरकांत दुबे जी। हमारे यहाँ से
0: जम्मू
1: के जम्मू शिव मोहन शर्मा बहुत अच्छे उद्घोषक रहे हैं। विपुल जी अपने टाइम के बहुत थे, क्योंकि वो डॉक्टर्स के साथ उनका बड़ा राबता था और बेहतरीन इंटरव्यूज लिया करते थे। गिरिजा जी जो एक टाइम में पहली उद्घोषिका थी टीवी की,
0: उसके बाद रेडियो में आई,
1: टीवी की जब शादी हो गई तो फिर वो रेडियो में आई। उस समय टीवी का क्या जुनून था लोगों को, और वो बड़ी जितनी खूबसूरत थी उतनी खूबसूरत उनकी आवाज थी, उतनी ही खूबसूरत उनकी अदायगी थी। और मेरी कुलीग्स रही हैं रमनी शर्मा, सुनीता शर्मा, और अनाउंसर्स में तो सुनीता भगत बहुत अच्छी थी। एक नाम और ऐड करना चाहूंगी, रविकांत शर्मा अपने काम में बहुत मेहनत से काम करते थे,
0: डोगरी भाषा में
1: उनकी बहुत पकड़ थी, जबरदस्त पकड़।
0: सही कहा। किसी भी महफिल में जब आप जाते हैं तो आपसे लोग ऑटोग्राफ लेते हैं,
1: आपको लगता है कि हम उस मुकाम पर पहुंच गए?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है।
1: क्विज प्रोग्राम कर रहे थे लाइव, दिस वाज इन अभिनव थिएटर, तो जब मैं और मेरे हस्बैंड दोनों होस्ट कर रहे थे, तो जब हम कर रहे थे तो उनको पता चला कि माधवी कर रही है, तो आप मानोगे उनका हमें आपके ऑटोग्राफ चाहिए, तो उनके पास कागज नहीं था, तो उसने 1 रुपए का नोट निकाला, उसे कहा कि मुझे इस पे आप ऑटोग्राफ दे दो। फिर किसी महफिल में जो मैं होस्ट कर रही थी वो मुझे मिले, वो काफी वृद्ध हो चुके हुए थे, मुझे कहने लगे बेटा तुम तो मुझे नहीं पहचानती हो, लेकिन मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुम अभी भी वैसी ही हो, कोई खास फर्क नहीं पड़ा, मैंने तुम्हें आवाज से, मैं कही तुम माधवी है तो तुम बदली नहीं हो, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ दिखाना जो आज तक मेरे पर्स में है। उन्होंने पर्स खोला और उसमें से वही 1 रुपए का नोट निकाला जिसमें मैंने ऑटोग्राफ दिया था।
0: मुझे लगता है कि ये एक अनाउंसर का सबसे खूबसूरत सरमाया है,
1: सरमाया बिल्कुल सही
0: उसके काम का। रेडियो सखी माधवी शर्मा क्यों और कब तक?
1: रेडियो सखी माधवी इसलिए क्योंकि रेडियो ने उसको सखी बनाया है, रेडियो ने उसे वो ख्याति दी है, रेडियो ने उसे पॉपुलर किया है। रेडियो जब तक है तब तक रेडियो सखी माधवी है।
0: बहुत शुक्रिया। चलते चलते एक गाना आपकी चॉइस का हम सुनते
1: हैं। ये चॉइस आपकी होनी चाहिए, आप जानते हैं मेरी चॉइस, तो ये गीत मैं आपको कहती हूँ कि आप अपनी मर्जी का गीत चला दीजिए, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया।

0: गया।
1: बहुत शुक्रिया, आपसे बात करने के लिए बड़ी जुरत होनी चाहिए। मैंने वो जुरत की, मैं किस हद तक कामयाब रहा।
2: आप जिस हद तक कामयाब हैं ये हमारे सुनने वाले भी जानते हैं, और आपने कितनी संजीदगी से और कितनी बार मुझसे आपने कहा कि मैं एक करना चाहता इंटरव्यू, लेकिन कुछ कहते ना तुम इतने बिजी होते हो कि समय नहीं निकल पाता, पर आपने मेरा जो था ना वो काम जो था अधूरा नहीं रहने दिया, और मैं आपकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि जो आपने सोचा था वो कर दिखाया।
1: रेडियो के अंदाज में आप इस इंटरव्यू को क्लोज करेंगे।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे थे महफिल प्रोग्राम में, आज शरीके गुफ्तगु थे मेरे वरिष्ठ साथी श्री रमेश मराठा जी और मैं रेडियो सखी माधवी।
1: बहुत बहुत शुक्रिया माधवी जी, आपने वक्त दिया, अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे जीवन की कहानी को मेरी जुबानी श्रोताओं तक पहुँचाया, मैं आपकी तहे दिल से आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
3: अभी आप सुन रहे थे सार्थक वार्ता श्रीमती माधवी शर्मा और रमेश मराठा के बीच। हम आप दोनों के बहुत आभारी हैं।
4: श्रीमती माधवी जी के अनुभव टीम रेडियो वितस्ता के लिए बहुत खास रहा। मुझे भारत सोपोरी
3: और मुझे किडनी, हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
4: ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: ही दालच में, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला केंट से हमारी प्रसारण, सुनते रहिए दिल से।
2: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।
3: तुशु बोजान FM 90.0 रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी हुन। बोजान रोजू पनीन पसंदीद बर्थ।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: अंदर रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

0: कुमार, अरे तुम बस गाड़ी को भी यहीं पंक्चर होना था। हम पहुँचे तो सारी आफत चल गई बाबा, इन हाथों से सबकी गाड़ी चल रही है बाबा।
1: वाह, अरे वाह।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा गीत।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
2: यू आर लिसनिंग FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। अंबाला केंट्स फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो, लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता पर। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

यू आर एंजॉयिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: बालाकैन का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: नब्बे आशारिया सिफर FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

तुझसे लफ्जों का नहीं रूह का रिश्ता है मेरा, तू मेरी सांसों में बसी है खुशबू की तरह।

ये दिल लगी कहीं छूट न जाए पीछे, क्योंकि अपनी दुआओं में मैं रब से सिर्फ तुम्हें मांगता हूं। हर पल चुरा लेता हूं तुम्हें तुम्हें से। इन शामों में यहीं पे आकर तुम्हें ढूंढता हूं, तुम्हारा इंतजार करता हूं बर्फ पिघलने तक, इन मौसमों के गुम हो जाने तक, कहीं ये दिल लगे ना छूट जाए। चश्मे पर आपको समंदर लिखूं या न लिखूं, तुमसे नजरें मिला के बार बार ये ख्याल आया।

बस जिंदगी यूं ही गुजर गई बिना बात कहे। इस अंजमन में बातें हुई पर वो बात रह गई जो सीने में

काश कोई सुनने के लिए फिर से मुझे आवाज देता, मुझे पुकारता, मुड़ के देखता, ठहरता चंद पलों के लिए। शायद शायद मैं अपनी बात कह पाता।

भी सुबह का उजाला एक नई उम्मीद को जन्म देती है। फूलों के चमन में बुलबुल शबनमी बूंदों में नहा रहे हैं और ये दौड़ते बादल सारे आकाश को नीला करते हुए खुद को छिपा रहे हैं बादलों की कतारों में। यह है हमारी सुबह का आगाज मुस्कुराहट से भरपूर।

परछाइयों के इस शहर में अब खाली है मेरा आंगन। काश कहीं से धूप निकल आती, शायद हम उनके दीदार कर पाते, उनको फिर से अपने सीने की आग से रूबरू कराते और ये बताते कि मैं अभी भी सुलग रहा हूं तुम्हारी मोहब्बत में। तस्कीने दिल की खातिर वादा तो कीजिए, हम जानते हैं आपसे आया न जाएगा।

फिल्मी गीतों का ये खूबसूरत सफर आपने तय किया अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा। चाहेंगे आपसे इजाजत, रेत पर लिख के मेरा नाम मिटाया न करो, आंखें सच बोलती हैं प्यार छिपाया न करो।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: गाड़ी घर में खड़ी है मगर जाने और बुलाने के लिए हजारों बार सोचते हैं।
1: कुछ साल पहले तक तो हम और हमारे सब रिश्तेदार एक दूसरे से मिल लिया करते थे आराम से, न फोन करके जाना और न ही किसी के आने से परेशान होना। अतिथि देवो भवः सिर्फ नाम के लिए नहीं था, सच में दिल से मानते थे सब।
0: हाँ दादाजी, आई टोटली एग्री विद यू। महीने सालों तक किसी से मिलते नहीं है और दूरियां बढ़ जाती है और साथ ही बढ़ जाता है डिप्रेशन और अकेलापन।
1: लक्ष्मी अब क्या बताऊं तुम्हें, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, सुबह पार्क में बैठे बुजुर्ग एक दूसरे से जब एक घंटा बात करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उसके बाद पूरा दिन अकेलापन सा रहता है। खास तौर पर जब एक उम्र के बाद जीवन साथी भी नहीं रहता। कभी कभी सोचता हूँ कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है मगर साथ देने वाला कोई अपना नहीं होता। जीवन की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती चली जाती है। तनाव, अकेलापन और अवसाद सब एक साथ दुश्मन के रूप में बुजुर्ग शरीर में घर कर लेते हैं।
0: दादाजी, बुजुर्गों में बढ़ रही डिप्रेशन से बहुत सी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है और बीमारियां घर कर लेती हैं। इसका तो बस एक ही सलूशन है और वो हमारे देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ है।
1: अच्छा, तुम योग और प्राणायाम की बात कर रही हो?
0: हाँ दादू, इसके साथ साथ ध्यान यानी मेडिटेशन की भी बात कर रही हूँ।
1: लक्ष्मी, हमारी संस्कृति में ही बहुत कुछ है खुद के लिए जो हमें पता है, लेकिन हम शायद उसका अपने जीवन में इस्तेमाल करना या उससे अपनाना भूल जाते हैं।
0: दादाजी, क्या आप जानते हैं जो बुजुर्ग डिप्रेशन में रहते हैं उनकी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, भूख भी नहीं लगती और दिन प्रतिदिन तबीयत खराब हो जाती है। मगर दादाजी, आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ कि अगर कोई बुजुर्ग ऐसा फील करता है तो सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय भी बहुत सी मदद करता है। कुछ योजनाएं ऐसी है जो बुजुर्गों के लिए वरदान साबित होती है। अक्सर इस उम्र में बहुत से लोग बच्चों से अलग शहर में रहने या जीवन साथी को खो देने के बाद बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। ऐसे लोगों के लिए मंत्रालय द्वारा काउंसलिंग भी मुहैया कराई जाती है।
1: कैसी काउंसलिंग और इससे कैसे अकेलापन या डिप्रेशन दूर किया जा सकता है?
0: ये काउंसलिंग सेशन एक्सपर्ट द्वारा कराए जाते हैं, मनोवैज्ञानिक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जैसे एक्सपर्ट्स। चलो मैं आज आपको मिलवाती हूँ ऐसे ही एक एक्सपर्ट से जो बताएंगे कि कैसे बुजुर्ग के इस अवसाद को खत्म किया जा सकता है। आप अगर चाहो तो हम आज उनके क्लिनिक चल भी सकते हैं। वो जरूरतमंद लोगों की मदद भी समय समय पर सेवा के रूप में करते हैं।
2: हमारे बुजुर्ग नहीं है लाचार, क्योंकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने खोले हैं हमारे बुजुर्गों के लिए मान सम्मान के द्वार। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने चलाई है कई योजनाएं, जिससे जो है लाचार उन्हें मिलेगा सुदृढ़ आधार, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा बुजुर्गों के उत्थान की योजना अटल वयो अभ्युदय योजना में कई योजनाओं का समावेश है।
3: अटल वयो का एक घटक जिसके तहत वरिष्ठ नागरिकों, गृहों, वृद्धाश्रमों, सतत देखभाल गृहों आदि का संचालन और रख रखाव के लिए गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।
2: दूसरा है एल्डर लाइन 14567 की सहायता से बुजुर्ग पेंशन, कानूनी मुद्दों, राशन कार्ड, आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना सहित अन्य तरह की सूचना के लिए मुफ्त जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे। उम्र के आखिरी पड़ाव पर अक्सर बुजुर्ग लोगों को कोई ना कोई समस्या आती रहती है, इसके लिए है एल्डर लाइन।
3: तीसरा है जेरियाट्रिक केयर गिवर्स ट्रेनिंग। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वृद्धावस्था देखभाल कर्ताओं के क्षेत्र में आपूर्ति और बढ़ती मांग के अंतर को घटाना है, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को अधिक पेशेवर सेवाएं प्रदान की जा सकें और साथ ही वृद्धावस्था के क्षेत्र में पेशेवर देखभाल कर्ताओं का एक कैडर तैयार किया जा सके।
2: चौथा है सेफ, देश के वरिष्ठ नागरिक के रोजमर्रा के काम अब आसान हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए SAGE यानी सेज सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन कार्यक्रम पोर्टल को वर्चुअल तरीके से लॉन्च किया है। सेज पोर्टल भरोसेमंद स्टार्टअप के जरिए बुजुर्गों की देखभाल में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने वाला वन स्टॉप एक्सेस होगा।
3: राष्ट्रीय वयोश्री योजना। राष्ट्रीय वयोश्री योजना BPL श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों के लिए शारीरिक सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए एक योजना है। ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। योजना के कार्यान्वयन के लिए व्यय वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष से पूरा किया जाएगा।
2: अगला है कैटरेक्ट सर्जरी स्कीम। आयुष्मान भारत के तहत बुजुर्गों का निशुल्क आंखों का ऑपरेशन किया जा रहा है।
3: भरण पोषण का अधिकार। इस अधिनियम के तहत भरण पोषण पाने का अधिकार किसे है? ऐसे माता पिता, दादा दादी, वरिष्ठ नागरिक जो अपनी आय और संपत्ति से अपना भरण पोषण नहीं कर सकते, वे इस अधिनियम के तहत भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। माता पिता की परिभाषा में जैविक, गोद और सौतेले माता पिता भी आते हैं।
2: तो उठा के इन योजनाओं का लाभ आप भी बढ़ाइए अपना सम्मान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सौजन्य से CRA द्वारा निर्मित और प्रसारित।
0: आज पता चला कि कैसे मनोवैज्ञानिक लोगों की मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करते हैं।
1: हाँ भाई, ठीक बात है। जब कोई साथ नहीं दे सकता, तब कुछ खास लोग ही आते हैं जीवन में ऊपर वाले का आशीर्वाद बनकर।
0: सच में अक्सर दादाजी खबरें देखते हैं कि बहुत से बुजुर्ग अकेलेपन का शिकार हो चुके हैं। खराब होती है सेहत से वो उबर नहीं पाते। मानसिक कमजोरी धीरे धीरे पूरे शरीर को कमजोर कर देती है।
1: लक्ष्मी, मेरे दोस्त नरेश की सेहत हार्ट ऑपरेशन के बाद काफी बेहतर होने लगी थी, मगर उससे पहले उसके बच्चे भारत छोड़ अमेरिका शिफ्ट हो गए बेहतर करियर की तलाश में। और बस अच्छे खासे नरेश को डिप्रेशन होने लगा और फिर भूख प्यास भी कम होने लगी और फिर ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं था, तो हार्ट से जुड़ी समस्याएं हो गई। अब अगर कोई उस टाइम उससे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट स्कीम्स के विषय में जानकारी दे देता तो शायद वो भी जल्दी रिकवर कर पाते। अब अगर वो अमेरिका चले जाते, बच्चे सब आसपास होते, मगर फिर भी अपना देश तो अपना ही होता है। यहाँ का मौसम, यहाँ का खाना, यहाँ की बोली, सब कुछ उसे बहुत याद आती। और तो और अवसाद फिर से एक बार उसके जीवन में आ चुका है, जिससे निकल पाना अब संभव हो भी पाएगा या नहीं पता नहीं।
0: दादाजी, क्या आप जानते हैं सेल्फ हेल्प के लिए और मन के शांत रखने के लिए बहुत जरूरी है मेडिटेशन यानी ध्यान।
1: सही कहा तुमने, मेडिटेशन यदि सही से किया जाए तो मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रांग हो जाती है। मैं व्यथित भी नहीं होता और गलत ख्याल या सोच नेगेटिव नहीं होती, और 60 के बाद वैसे भी मुझे लगता है कि रिटायरमेंट प्लान कंपलसरी हिस्सा होना चाहिए। अगर नहीं किया ध्यान तो खो सकता है सारा ज्ञान।
0: वाह दादाजी, शायरी। हाँ,
1: मेडिटेशन के साथ साथ योग भी हमारे जीवन को सही दिशा और एकाग्रता देता है यानी फोकस। तो उम्र कोई भी हो, योग और मेडिटेशन इज ए मस्ट फॉर एवरीवन।
0: आज तो आप बड़ी कमाल की बातें कर रहे हैं दादाजी। अच्छा चलो, इसी बात पर आज योग और मेडिटेशन के बारे में डिटेल बताते हैं सभी को, वो भी एक्सपर्ट से बातचीत के जरिए।
1: आइए करते हैं स्वागत सहज योग मेडिटेशन प्रैक्टिशनर, आर्किटेक्ट व शिक्षा विद्वान डॉक्टर आराधना जिंदल जी का FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता के स्टूडियो में।
4: FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: आपका स्वागत डॉक्टर आराधना जिंदल जी। तो अब हम चाहते हैं कि आज हम आपसे प्रश्न करें और जितने भी हमारे श्रोता हैं वो भी अपनी जिंदगी को ऐसे ही संभालें और मेडिटेशन के माध्यम से या आपके जो उत्तर आएंगे उनके माध्यम से अगर हम अंबाला की जनता को और जितने भी हमारे सुनने वाले हैं अगर हम उनकी जिंदगी में कुछ सकारात्मकता ले आए तो हम प्रश्नों का दौर शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे सहज योग का अभ्यास करने का आपके लिए क्या महत्व है, कृपया विस्तार से बताएं।
4: देखिए, जैसा मैंने आपको बताया है कि सहज योग का अभ्यास हमारे जीवन में हमें वर्तमान में रहना सिखाता है, हमें संतुलन में रहना सिखाता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है आज की भागदौड़ की जिंदगी में। आप जानते ही हैं कि हम आज एक टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में रह रहे हैं। हर नया दिन एक नया आविष्कार, एक नई डिस्कवरी, एक नई परिवर्तन हम महसूस कर रहे हैं। और आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति एक टेंशन में, स्ट्रेस में है। और स्ट्रेस किसी भी तरह का हो सकता है, एक अपने एक जॉब का स्ट्रेस हो सकता है, बिजनेस का स्ट्रेस हो सकता है, परिवार का, स्वास्थ्य का, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है। अब देखिए, जब हम बात करते हैं ना मन और बुद्धि की, जब हम बात करते हैं मानसिक और शारीरिक, क्योंकि मन, बुद्धि, मानसिक, शारीरिक ये सब आपस में जुड़ा हुआ है, ये एक तरह से कारपेट की तरह वोवन है, ठीक है। तो जब हम ये बात करते हैं तो जब हम अंदर से ही स्ट्रेसफुल होते हैं तो हम अपना 100% कभी भी कहीं भी नहीं दे सकते, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो हमारी जॉब बिजनेस हो, हम हर जगह अनसेटिस्फाइड से, अनबैलेंस से ही रहते हैं। तो क्या होता है कि जो सहज योग ध्यान है ये जब हमें वर्तमान में रखता है ध्यान के माध्यम से, तो हम परिवार के बीच में बैठे हैं तो भी हम संतुलन में हैं, हम बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए रिएक्शंस ही हमारे संबंध बिगाड़ती हैं परिवार में, रिएक्शंस ही हमें बाहर के लोगों के साथ हमारे एक डिस्प्यूट्स क्रिएट करती हैं, और रिएक्शंस ही कहीं ना कहीं हम अपने जॉब पे करते हैं तो हमारे और हमारे बॉस के, हमारे कलीग्स के संबंधों को खराब करती हैं। रिएक्शंस एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो हर जगह एक, जिसे कहते हैं अनबैलेंस क्रिएट करती है। तो जैसे जैसे हम वर्तमान में रहना सीख जाते हैं, बैलेंस में रहना सीख जाते हैं, तो हमारी रिएक्शंस कम होने लगती हैं, हमारी प्रेम बढ़ने लगता है लोगों के साथ, हमारा एक समन्वय बढ़ने लगता है लोगों के साथ, लोग हमें प्यार करने लगते हैं, हम लोगों को प्यार करने लगते हैं, और ऐसे क्या हो जाता है, एक हर जगह हार्मनी क्रिएट होने लग जाती है, एक वातावरण, एक घर में, परिवार में, एक ऑफिस के प्लेस में, बिजनेस प्लेस पर। तो ये एक सहज योग का एक बहुत बड़ा फायदा है।
1: क्या आप बता सकती हैं कि सहज योग का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है?
4: बिल्कुल पड़ता है जी। देखिए, अगर हम सहज योग को समझना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि सहज योग है क्या। मैंने आपसे बात की थी श्रीमाता जी निमला देवी की, जिन्होंने सहज योग की स्थापना की 5 मई 1970 में। तो जब हम हाथ खोल के बैठते हैं और हम मांगते हैं कि माँ मेरी कुंडलनी शक्ति जागृत कीजिए, तो हमारी शक्ति ये जागृत होती है और हमारे 6 चक्रों को भेद कर हमारा भ्रमरंध्र खोल देती है, यानी दशम द्वार खोल देती है, हमारा संबंध परमात्मा से करा देती है, और ये हमारे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है। यानी इसके बाद हमारा क्या होता है, उत्थान, आध्यात्मिक उत्थान शुरू हो जाता है। इसके बाद अगर हम जब मेडिटेशन करते हैं, सवेरे शाम मेडिटेशन करते हैं, तो धीरे धीरे धीरे हमारे जो चक्र, जो हमारी कहते हैं ना हमारी खुद की रोज दिनचर्या से हमारे बाधित हैं, उनमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वो चक्र और हमारी नाड़ियां जो उनमें ब्लॉक्स हैं वो धीरे धीरे खुलने लगती हैं। और जैसे जैसे ये चक्र और नाड़ियां खुलने लगती हैं, हमारे अंदर संतुलन आने लगता है, हमारा शरीर ठीक होने लगता है। ये आपके प्रश्न का उत्तर है कि हमारा शरीर ठीक होने लगता है। और देखिए, जैसे जैसे हमारा शरीर ठीक होगा, धीरे धीरे क्या, हमारा मन भी अच्छा होने लगता है। हमारा मन से बना है मानसिक, तो मन हमारी लेफ्ट नाड़ी से बनता है, राइट नाड़ी से शरीर, मन और शरीर का आपस में लय स्थापित हो जाती है जब कुंडलनी शक्ति ऊपर उठती है, हमारी तीनों नाड़ियों को ले जाके संतुलित करती है, हमारे विचारों को खींच लेती है, विचारों को खींच के हमारे सहस्त्रार से बाहर निकलती है। तो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होने लगता है, और धीरे धीरे हम क्या होता है, एक ब्लिस फील करते हैं। हम एक परिवार में बैठे हैं, हम शांत हैं, बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे। हम वर्क प्लेस पे हैं, शांति से काम कर रहे हैं। जैसे एक देखिए समुन्दर है, इसकी तुलना आप समुन्दर से करिए, गहरा। जितना समुन्दर गहरा होगा उसमें उतनी कम रिपल्स या बिल्कुल ना के बराबर रिपल्स है। रिपल्स कहाँ होती है, जो तट पर होता है समुन्दर, वो ही ज्यादा हिलता है, आगे और पीछे जाता है, है ना, वो शैलो होता है। जो फिर हम अपनी गहराई पाने लग जाते हैं रेगुलर ध्यान से।
1: कई बार नींद नहीं आती है जिस कारण अगले दिन हम अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। क्या तरीका होना चाहिए ताकि हमारी नींद भी पूरी हो तो अगले दिन हम अपना 100% दे सकें?
4: ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि आज की डेट में हर व्यक्ति स्ट्रेसफुल है
1: जी।
4: मतलब मुझे तो लगता है कि भाई मैंने तो कोई ऐसा व्यक्ति देखा नहीं कि जिसके अंदर स्ट्रेस नहीं है, और जो कहता भी है वो भी शायद कहीं ना कहीं ये बात असत्य बोल रहा है। तो जब हम एक बार अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेते हैं, यानी हमारी कुंडलनी शक्ति जागृत होती है, उसके बाद कुछ चीजें हैं जिनको हम कर सकते हैं। जैसे एक पानी पैर क्रिया होती है, इसको हम फुट सोक कहते हैं। हमारे भारतीय जो हमारा विज्ञान है, ज्ञान जो भी कह सकते हैं, उसमें भी बताया है कि रात को सोने से पहले अगर हम दोनों पैर को अपना पानी में डालें और एक मुट्ठी भर नमक डाल दें उसमें, क्योंकि मुट्ठी जो नमक होता है ना, ये हमारा गुरु तत्व होता है। ये क्या करता है, हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी, जितनी भी बॉडी में नेगेटिविटी होती है पूरे दिन की, वो खींच लेता है, हमारे स्ट्रेस को, हमारे विचारों को खींच लेता है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, हमने एक बकेट में इतना पानी लेना है कि जितने हमारे एंकल्स डूब जाएं, थोड़ा सा नमक डाल देना, समुद्री नमक, और अपने दोनों पैरों को सिर्फ 10 मिनट डाल के हमने ध्यान उसी मुद्रा में करना है, उसी स्थिति में करना है। सिर्फ सोने से पहले आप इतना ही कर लेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि मैं सारी सारी रात तारों को, अगर मैं, हम छोटे थे ना तो हम बाहर सोते थे तो तारों को गिनती रहती थी मैं, मुझे याद है।
1: यानी कि आप जागती रहती थी?
4: हाँ, जागती रहती थी ना। तो लेकिन सहयोग में आने के बाद धीरे धीरे ऐसा हुआ, 1 सेकंड तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा टाइम है, 1 पल में मुझे नींद आती है।
1: बहुत अच्छी बात है, और ये मेरा व्यक्तिगत प्रश्न इसलिए था क्योंकि आज के डेट में हर कोई स्ट्रेस से भरा है, और जब हम सोने जाते हैं तो शायद हम अच्छे से नींद नहीं कर पाते हैं, जिसका असर हमारी दिनचर्या और हमारी जिंदगी पे पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रश्न का जवाब देने के लिए।
4: सपोरी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये एक मौका दिया एक अपनी बात को कहने का, व्यक्त करने का और श्रोताओं तक पहुंचाने का, आप जो आपका रेडियो वितस्ता है। मैं एक ही बात कहूंगी, आप ध्यान करें सवेरे शाम 5-5 मिनट मिनिमम, ठीक है, आप ध्यान करिए। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि अगर आप ध्यान करेंगे तो आप ना केवल मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आप आध्यात्मिक और आप इमोशनली भी आप बहुत ज़्यादा बैलेंस हो जाएंगे। तो यही मेरा एक संदेश है आप सभी लोगों के लिए, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।
5: बुढ़ापा अभिशाप नहीं, बुढ़ापा बनेगा उत्सव जिंदगी का। अटल वयो अभ्युदय योजना बनाए बुजुर्गों की जिंदगी को आसान, लौटाए उनका खोया हुआ स्वाभिमान। कहा जाता है बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे बुजुर्गों को होती है कई तरह की शारीरिक समस्याएं। ऐसे में गरीब, असहाय वरिष्ठ नागरिकों के पोषण के लिए सरकार ने उठाए हैं कदम। अटल वयो अभ्युदय योजना दिलाती है बुजुर्गों को सही पोषक भोजन। लगभग 50,000 बुजुर्गों को लाभ देने के लिए 39.6 करोड़ बजट में आवंटित किए गए हैं, जिससे होगा हमारे वरिष्ठ जनों का अभ्युदय। साथ ही सहारा बनी वरिष्ठ जनों का राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे के हमारे सम्माननीय वरिष्ठों को मिलेंगे सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र, जैसे व्हीलचेयर, हियरिंग हेड, वॉकर, जिससे खिल उठी हमारे बड़ों की खोई मुस्कान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। CRA द्वारा निर्मित, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: देखा दादू, कितना जरूरी इस लाइफ को सही ट्रैक पर चलने के लिए मेडिटेशन और योग, क्योंकि अगर मस्तिष्क और में शांति से काम करेंगे तो जीवन की गाड़ी ठीक ठाक स्पीड और माइलेज के साथ चलेगी।
1: क्या बात, तुम तो बिल्कुल इंजीनियर की तरह बात कर रही हो, वो भी लाइफ की इंजीनियरिंग के बारे में।
0: थैंक्स दादू, होपफुली आप बताओगे अपने सभी साथियों को कि अकेलापन का सबसे अच्छा साथी योग और मेडिटेशन है।
1: जल्द ही अपने दोस्तों की बैठक करता हूँ, और उसमें ये सारी जानकारी साझा करूंगा कि कैसे इस बहुत बड़ी मगर अनदेखी प्रॉब्लम को आसानी से हल किया जा सकता है।
0: ददू साथ ही और भी जानकारी दे दीजिए उन्हें योजनाओं के बारे में, याद है ना?
1: बिल्कुल याद है। नंबर एक, वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम IPSRC। ये कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों की भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसका उद्देश्य उनकी सामाजिक, शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसमें स्वास्थ्य सेवाएं, मनोरंजन गतिविधियां और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है।
0: नंबर दो, वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन 14567। वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं का तुरंत समाधान करने के लिए ये हेल्पलाइन उपलब्ध है। ये हेल्पलाइन उन्हें कानूनी सहायता, स्वास्थ्य सेवाएं और आपातकालीन सहायता प्रदान करती है। यदि कोई वरिष्ठ नागरिक परेशानी में हो तो वो 14567 पर कॉल कर सकते हैं।
1: नंबर तीन, जेरियाटिक केयरगिवर्स प्रशिक्षण। वरिष्ठ नागरिकों की विशेष देखभाल के लिए प्रशिक्षित केयरगिवर्स की आवश्यकता होती है। इस कार्यक्रम के तहत केयरगिवर्स को बुजुर्गों की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक देखभाल करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये कदम बुजुर्गों के लिए जीवन को बेहतर बनाने में सहायक है।
0: नंबर चार, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन सेज। ये पहल वरिष्ठ नागरिकों की सेवाओं और उत्पादों के लिए नए अवसर प्रदान करती है। सेज के माध्यम से निजी और सरकारी संगठनों को वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाता है।
1: नंबर पाँच, राष्ट्रीय वयोश्री योजना RVY। इस योजना के तहत गरीब वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण जैसे चश्मे, श्रवण यंत्र और वॉकर मुफ्त में प्रदान किए जाते हैं। ये उनके जीवन को आत्मनिर्भर और सुखद बनाने में मदद करता है।
0: नंबर छह, मोतियाबिंद सर्जरी कैटरेक्ट सर्जरी। मोतियाबिंद बुजुर्गों में आम समस्या है। इसके लिए मुफ्त या सस्ती दरों पर सर्जरी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ये पहल उनकी दृष्टि क्षमता को बहाल करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: नंबर सात, बुजुर्गों को भरण पोषण का अधिकार। भारत सरकार ने बुजुर्गों के लिए भरण पोषण का अधिकार सुनिश्चित किया है। इसके तहत परिवार को उनके भरण पोषण का ध्यान रखना आवश्यक है। यदि परिवार ऐसा करने में असफल रहता है तो बुजुर्ग कानूनी सहायता ले सकते हैं।
0: इन योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान और सहायता प्रदान की जा रही है। हमें भी उनके प्रति अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए और उनके जीवन को खुशहाल बनाने में योगदान देना चाहिए।
6: वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान समाज की पहचान।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, एपिसोड 16, मानसिक स्वास्थ्य के लिए सचेतनता और ध्यान। इस कार्यक्रम में लक्ष्मी के किरदार को आवाज दी आरजी किडनी ने, भरत ददू के किरदार को आवाज दी भारत सोपोरी ने, और इसमें आपने वॉइस बाइट सुनी डॉक्टर आराधना जिंदल जी का, जो मेडिटेशन और सहज योग एक्सपर्ट है। उनका बहुत बहुत आभार। इस कार्यक्रम को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्योदय योजना पर आधारित तैयार किया गया था। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड, एडिट व निर्देशित किया भारत सोपोरी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

जी श्रोताओ, आपको हमारी आवाज अगर मिल रही है तो 4 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम राम राम हरियाणा। आप बने रहिए हमारे साथ और उम्मीद करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगेगा।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून में जलती रेत में लेटे कहता हूँ, सर्दी आज कम है। दिसंबर की ठंड पी के कहता हूँ, गर्मी का मौसम है। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। सीने में अपनी सांस को टुकड़ों में भरता हूँ। -30 डिग्री में राइफल टांग के टहलने निकलता हूँ। आदमजात की औकात क्या जो मैं कुदरत से नहीं डरता। आदमजात की औकात क्या जो मैं कुदरत से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। चांद हर ईद में तन्हाई का जाफा लाता है, मुझे राखी बांधने बस लिफाफा आता है। अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया, अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया। मेरा बाप मेरे इंतजार में बूढ़ा हो गया। मेरी बीवी, मेरी बीवी सिंदूर लगा के भी लगती कवारी है। मैंने सहूलत का गला घोटा, जरूरत नकारी है। हाँ मैं निर्दयी हूँ, हाँ मैं निर्दयी हूँ। मैं अपने उजड़ते घरों आंगन से नहीं डरता, मगर मैं डरता हूँ। हाँ मैं भी डर जाता हूँ। मैं डरता हूँ नफरत की आग से, मजहब के चोलों से, सियासत के सांप के कातिल सपोलों से। मैं हवा में फैली अफवाह से डर जाता हूँ, मैं सैलाब गुमराह से डर जाता हूँ। मुझे डर है मेरी सरजमी को अपने उजाड़ेंगे, खून की मोहर से खुद को संवारेंगे। मैं मजबूर हूँ, कमज़ोर हूँ, मैं खुद से लड़ नहीं सकता। अपनों की तरफ बंदूक लेकर मैं बढ़ नहीं सकता। मैं बस बोल सकता हूँ, मैं बस बोल सकता हूँ। मैं बहरों की तरह गूंगा, तुम्हारे कान पर है हाथ मगर फिर भी मैं बोलूंगा। हजारों साल की ये सभ्यता को गौर से देखो, सुनो आवाज तुम मन की, जरा गहराई से सोचो। तुम्हें क्या सच में लगता है कोई अपना पराया है, हुआ पैदा है जो इस देश में बाहर से आया है। सभी का खून है शामिल, लगी कुर्बानियां सबकी, कि हमने हड्डियों को जोड़कर भारत बनाया है। तुम्हें गर इश्क है इससे, तुम्हें गर इश्क है इससे, तो इसको दिल से अपनाओ। कोई पूछे अगर मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ, कोई पूछे अगर मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ। धन्यवाद।

0: Amore mio, dove sai tu? ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के?

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: सुनिए और सुनाइए, रेडियो विदस्ता सुनना भूलना जाइए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विदस्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विदस्ता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।
2: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।
2: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

تویچو بوزان 90.0 ریڈیو وتستا ہم سفر زندگی ہوں

0: देंगे
1: से कॉल आ रहा है लग रहा है। हेलो
2: हेलो
1: हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी कौन बोल रहे जी?
2: भाई जी मैं रणजीत सिंह बोल रहा हूँ जी, गांव मरदान से।
1: हाँ जी रणजीत जी बोलिए।
2: राम राम जी सभी भाइयों को, और वीरेंद्र सिंह चौहान जी आपको भी राम राम जी।
1: राम राम जी, बताइए जी।
3: राम राम राम राम।
2: हाँ जी मैं ये कह रहा हूँ सर, विकास तो बहुत हुआ है हमारी सरकार में, मैं भी बहुत पुराना सरकार से जुड़ा हुआ और विकास बहुत काफी हो रहा है, लेकिन सर हमारे एरिया में बिजली की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, इसके बारे में कुछ रहे जी।
3: कहाँ आपके गांव कौन से, जरा गांव बताएं दोबारा।
2: मरदान हेड़ी, मरदान हेड़ी।
3: अरे मरदान हेड़ी वालों, बिजली को क्या हो गया आपकी?
2: सर आज
3: हमने तो पूरी बिजली दे रखी है, कहाँ रास्ते में बिजली जाती है?
2: लाइट का प्रबंध नहीं है जी, लाइट आती ही नहीं जी, एक दो घंटे आती है। और आज तो एक ऐसा कारनामा हुआ जी, मैंने बिजली वाले लाइनमैन को फोन कराया तो वो बोले हम तो दूसरी लाइन पे गए हुए हैं, और जब वहां पे जाके मैंने देखा तो वो ताश खेलने लग रहे थे चार पांच जने, और फिर एसडीएम साहब से कॉल
3: करी बिजली की दिक्कत कब से
2: फोन कराया, तो फिर जाके उन्होंने बिजली ठीक करी, घंटा बिजली चल गया, फिर गुल होगी।
3: कब से है दिक्कत?
2: कम से कम भी सर एक 15 दिन से ये दिक्कत चल रही है जी।
3: ये गांव वाली बिजली भी ऐसी आ रही है कि खेत वाली की कह रहे हो आप?
2: गांव वाली तो बिजली ठीक है जी, अब खेत वाली बिजली है जी, और वहां हमारे पहनी है, मतलब कहने का मतलब डेरे है जी वहां, और कम से कम 30-35 डेरे है जी।
3: देखो जब फसल की कटाई का समय चलता है ना, उस समय खेतों वाली बिजली में तो कट लगते हैं, ताकि गेहूं में

0: तरफ से मैं ये बात गर्व के साथ कह सकता हूं कि बिजली की स्थिति 12 साल हो गए हमारी सरकार को, लगभग लगभग राज्य की को भी और केंद्र को तो हो ही गए पूरे 12। तो इस अवधि में हमने हरियाणा में जो कमाल के काम किए हैं, जिन कामों के कारण सरकार की वाहवाही हुई है, उसमें एक बिजली सुधार भी है। तो बिजली की स्थिति बहुत बेहतर हुई है, जहां कहीं छोटी मोटी उसको दूर करेंगे हम। जी बताएं।
1: जी वीरेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? वीरेंद्र जी, मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है?
0: चलो, वो जो भी कंसर्न लाइनमैन है उसके खिलाफ लिख करके एक शिकायत दीजिए, उसको उससे जवाब तलब करेंगे हम। ठीक है जी, बहुत धन्यवाद आपका।
1: वीरेंद्र सर, मेरी आवाज आप लोगों तक?
0: भारत जी,
1: जी मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है?
0: पूछिए ना,
1: मेरी आवाज क्या पहुंच रही
0: इससे
1: है?
0: इससे पहले कि मैं एक कार्यक्रम में चला जाऊं, मैं क्या इससे पहले कि मैं किसी और कार्यक्रम में चला जाऊं बीच में छोड़ के, आप सवाल पूछ लीजिए आज।
1: सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है?

आशिक इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है, ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।

आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो रेडियो वत्तस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ ते सुनते रहो अपने

खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ऑन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

दोस्तों वजन एफएम नमत आचार्य सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हुन बोजान रोजियो पनिन पसंदीदा बात।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: ताज महल। एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा की।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 10। आज का ये कार्यक्रम संगीतकार रविंदर जैन पर आधारित है। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिट किया भारत सोपोरी ने, प्रस्तुतकर्ता व निर्देशन आरजे किरनी का।

0: से इच्छा से जुड़े मेरे व पांडु पुत्रों ने। बोलो संजय क्या
1: संजय
0: क्या किया
1: संजय वाच।

आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। नमस्कार प्यारे श्रोताओं, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरणी। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे संगीतकार की दुनिया में जिनके संगीत ने न केवल बॉलीवुड बल्कि हमारे दिलों में भी एक अलग जगह बनाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान संगीतकार रविंद्र जैन की, जिनकी धुनों में प्यार, भक्ति और संघर्ष की कहानियां छुपी हुई है। आज हम जानेंगे रविंद्र जैन के जीवन की उन पहलुओं के बारे में जिन्होंने उन्हें एक अमर संगीतकार बना दिया। तो आइए इस संगीत यात्रा में हमारे साथ जुड़िए।

रविंदर जैन सुप्रसिद्ध गायक, गीतकार, संगीतकार और संगीत निर्देशक थे, जिनका जन्म 28 फरवरी 1944 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। इनके पिता इंद्रमणि जैन थे, जो कि संस्कृत पंडित और आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। इनकी माता किरण जैन गृहिणी थी। रविंदर जी के 6 भाई और 1 बहन थी। जब रविंदर जी का जन्म हुआ तो एक दिन बाद ही उनकी आंखें नहीं खुली। तब डॉक्टर ने सर्जरी के जरिए उनकी आंखें खोली, लेकिन उन्हें तब भी दिखाई नहीं दी।

रविंदर जी की शुरुआती शिक्षा अलीगढ़ विश्वविद्यालय के ब्लाइंड स्कूल में हुई थी। 4 साल की उम्र में ही उनके पिता ने उनकी संगीत की शिक्षा की व्यवस्था की, जिसके लिए उन्हें मिनी हारमोनियम दिया। उन्होंने जीएल जैन, नथुराम शर्मा और जनार्दन शर्मा जैसे दिग्गजों से संगीत की शिक्षा ली। उसके बाद रविंदर जी अपने चचेरे भाई के कहने पर कोलकाता आ गए। वहां उन्होंने 10 साल तक संगीत की आगे की शिक्षा ली। कोलकाता में ही रविंदर जी ने 5 रेडियो स्टेशन पर ऑडिशन दिया, लेकिन उन्हें नकार दिया गया।

रविंदर जैन को पहली नौकरी बालिका विद्या भवन में 40 रुपए महीने पर मिली। इसी शहर में उनकी मुलाकात पंडित जसराज तथा पंडित मणिरत्नम से हुई। नई गायिका हेमलता से उनका परिचय हुआ। वह मिलकर बांग्ला तथा अन्य भाषाओं में धुनों की रचना करने लगे। हेमलता से नजदीकियों के चलते उन्हें ग्रामाफोन रिकॉर्डिंग कंपनी से ऑफर मिलने लगे। एक पंजाबी फिल्म में हारमोनियम बजाने का मौका मिला। सार्वजनिक मंच पर प्रस्तुति के 151 रुपये तक मिलने लगे। इसी सिलसिले में वे हरिभाई जरीवाला संजीव कुमार के संपर्क में आए। वर्ष 1968 में राधेश्याम झुनझुनवाला के साथ मुंबई आए तो पहली मुलाकात पार्श्व गायक मुकेश से हुई।

0: रविंदर जैन का पहला फिल्मी गीत 14 जनवरी 1972 को मोहम्मद रफी की आवाज में रिकॉर्ड हुआ। रविंदर जैन ने अपनी संगीत यात्रा की शुरुआत 1974 में फिल्म कांच और हीरा से की, हालांकि उन्हें असली पहचान 1980 में आई फिल्म चांदनी से मिली। चांदनी का संगीत न केवल उस समय के दर्शकों के बीच हिट हुआ, बल्कि आज भी ये लोगों के दिलों में जिंदा है।
1: ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, हो ठंडे ठंडे पानी से नहा

के संगीत में भारतीय शास्त्रीय संगीत और लोक धुनों का अद्भुत मिश्रण था जो उन्हें बाकियों से अलग करता था। वह संगीत के ऐसे साधक थे जिन्होंने अपनी धुनों से फिल्म की कहानी को न सिर्फ सजाया बल्कि उसे जीते जी महसूस भी कराया। 1973 में आई फिल्म सौदागर के लिए रविंदर जी ने गाने लिखे और कंपोज भी किए जिससे उन्हें पहचान मिली।

1987 में रामानंद सागर के निर्देशन में बने रामायण सीरियल ने इन्हें अमर बना दिया। रविंदर जी ने लगभग 200 फिल्मों और रामायण, श्री कृष्ण, अलिप लैला जैसे धारावाहिकों के लिए अपना संगीत दिया था।

रविंदर जैन जी ने कई हिट मूवीज और धारावाहिकों में अपने संगीत का जलवा बिखेरा। इस सूची में सौदागर, चोर मचाए शोर, चित चोर, अखियों के झरोखे से, राम तेरी गंगा मैली, हीना, विवाह एक विवाह ऐसा भी जैसे फिल्में रही। उन्हें संगीत में भारतीय शास्त्रीय संगीत और लोक दोनों का अद्भुत मिश्रण था जो उन्हें बाकियों से अलग करता था।

रविंदर जैन का संगीत सिर्फ फिल्मी गानों तक ही सीमित नहीं था, उनके संगीत में आध्यात्मिकता की गहरी छाप थी। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और उनके भक्ति गीतों ने भारतीय संगीत को एक नई दिशा दी। सत्यम शिवम सुंदरम जैसे गीत उनके जीवन और भक्ति के प्रति गहरे प्रेम को दर्शाते थे।

उनके भक्ति गीतों में एक अद्भुत शक्ति और शांति का एहसास होता था। इन गीतों ने उन्हें न केवल बॉलीवुड में बल्कि भारतीय संगीत के दूसरे क्षेत्र में भी एक महान कलाकार के रूप में स्थापित किया। जय हनुमान साईं बाबा जैसे धारावाहिकों में अपनी आवाज भी दी थी। रविंदर जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार, लता मंगेशकर पुरस्कार आदि मिले थे। उन्होंने उजालों का सिलसिला नाम से उर्दू शायरी लिखी, जिसके लिए उन्हें 1997 में उत्तर प्रदेश हिंदी उर्दू साहित्य समिति से साहित्य पुरस्कार मिला।

9 अक्टूबर 2015 में शरीर के कई अंग खराब होने के कारण मुंबई में उनका निधन हो गया। इनके लिखे और गाए हुए गीत और भजन आज भी लोगों के दिलों और दिमाग पर छाए हुए हैं। रविंद्र जी ने साबित कर दिया कि अगर इंसान में टैलेंट और कुछ इच्छा कर गुजरने का जज्बा हो तो कोई भी परेशानी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती।

आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने रविंद्र सेन के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उनका संगीत, उनकी संघर्षपूर्ण यात्रा और उनके अनमोल धरोहर हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। रविंद्र सेन का संगीत न केवल उनके समय में बल्कि आने वाली पीढ़ियों के दिलों में भी जीवित रहेगा। आपका धन्यवाद इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 10। आज का कार्यक्रम आधारित था संगीतकार रविंदर जैन पर। कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अलियान ने, एडिट किया भारत सोपोरी ने, कार्यक्रम को लिखा, निर्देशन दिया और प्रस्तुत किया RJ किरने ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता की प्रस्तुति।

फिल्मी गीतों पर मबनी प्रोग्राम पेश है। मुझे तू दर्द दे ऐसा जो तुझे भी मिल गया हो, मुझे तू फूल दे ऐसा जो मुरझा के खिल गया हो, मुझे तू दिल भी दे ऐसा जो अब तक सिल गया हो। मैं हूं रमेश मराठा।

एक सन्नाटा है जो मेरी उम्र के सिमटे हुए पलों की रहनुमाई करता है। तुम्ही ने तो सिखाया है चिराग बुझाने का तरीका भी। तुमने ये भी कहा था कि खुदा भी अंधेरों में सफर करते हैं, इसलिए एक सन्नाटा रखा है मैंने अपने आसपास।

अभी तक मुझको वो कहां भूले हैं। हम तो झूले हैं कितनी बहारों में, चिनारों में, सितारों में, जब कभी सफर होता था हमारा, और अपनी अपनी पसंद का तोड़ लेती थी सितारा। अभी तक गुलाबों के पत्ते हैं किताबों में, एक राज की तरह है तू मेरे हमराजों में।

0: कहां गई वो रातें, प्यार भरे नगमे, मासूमियत की बातें। सब कुछ बदल बदल सा गया है, मगर मेरा तस्वुर, मेरे ख्यालात, मेरे जज्बात खामोश तनहा ठहराव लिए। इन फिजाओं में तेरा मेरी राहों का तकना फिर से मजबूर करता है जीने को। आखिर क्यों? इसलिए शायद कि हम और गम के तूफान में बह जाएं और तड़पें, गुट गुट कर दम तोड़ दे।
1: बेवफा तुझको पहचान जाते, खुदा की कसम।

जिंदगी एक फासला है, किनारे से किनारे तक, नजर से नजर तक, सांस से सांस तक। एक सफर है आवाज से आवाज तक, खाक से खाक तक, मौत से मौत तक। ए दोस्त, ये फासले, ये शर्तें, ये सफर रहने दो।

0: बालाकैन का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: आप सुन रहे थे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। आज हमने आज के प्रसारण 10 मिनट पहले ही समाप्त कर दिए, और उम्मीद करते हैं कि आज के दिन के कार्यक्रम आपको पसंद आए होंगे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मरहटा। आज के लिए बस इतना ही। स्टूडियो की घड़ी में समय है 8:51:34। श्रोताओं, अब समय हो चला है FM 90.0 MHz पर आपके अपने पसंदीदा स्टेशन रेडियो वितस्ता के आज के इस खूबसूरत सफर को यहीं थामने का। आज का दिन हमारे लिए बेहद खास और गौरवशाली रहा। आज 11 जून है, यानी भारत माँ के वीर सपूत, महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की जयंती, जिन्होंने अपने लहू से देश प्रेम की वो इबारत लिखी जिससे इतिहास कभी मिटा नहीं सकता। आज हमने आपने इस मंच से देश प्रेम की बातें की, ये जाना कि देश प्रेम हमारे लिए कितना जरूरी है। देश सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं होता है, बल्कि श्रोताओं, देश हमारी अस्मिता है और हमारा मान है। आज हमने उन अमर शहीदों को भी याद किया जिन्होंने हमारी आज की आजादी के लिए अपने कल की कुर्बानी दे दी थी। बिस्मिल जी के वो शब्द आज भी हमारी रगों में देशभक्ति का संचार कर देते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। श्रोताओं, वतन से मोहब्बत का ये प्रवाह हमारे दिलों में हमेशा बेहतर रहना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे हमारी वितस्ता की धारा निरंतर बहती है। तो श्रोताओं, ये था आज का विषय, और हर दिन की तरह आइए आज की इस शाम को विदा करते हैं इन खूबसूरत पंक्तियों के साथ। पंक्तियां यूं हैं, दिलों में देश प्रेम का जज्बा और यादें बेहिसाब रखते हैं, दिलों में देश प्रेम का जज्बा और यादें बेहिसाब रखते हैं, हम अपनी रगों में इनकलाब का एक नया ख्वाब रखते हैं, थमती नहीं वितस्ता की धारा ना रुकेगी कभी ये प्रवाह, थमती नहीं वितस्ता की धारा ना रुकेगा कभी ये प्रवाह, शहीदों की शहादत को सलाम, हम वतन से बे इंतहा प्यार रखते हैं, शहीदों की शहादत को प्रणाम, हम वतन से बे इंतहा प्यार रखते हैं। तो ये थी आज की पंक्तियां, और जाते जाते आपके कल के कार्यक्रमों का विवरण बताता हूं। कल 12 जून 2026 शुक्रवार को हमारी सभा की शुरुआत होगी 5:58 पर वंदे मातरम से, और लाएंगे आपके लिए एक प्रकाश प्रवाह और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। 6 बजे आप सुनेंगे भक्ति संगीत, और साथ में आप सुनेंगे शब्द और गुरबानी भी। 7:05 पर रेट्रो हिट्स एपिसोड 7 दोस्ती और रिश्ते पेश करेंगे आज ये किरणी। 8:30 शुक्रवार को आप सुनते हैं रंगमंच की ओर एपिसोड 5 होगा, और पेश करेंगे मानव मेहरा, और 9:30 फौजी भाइयों के लिए एपिसोड 2, और 10:20 पर गुप्तगु हमारे साथ होंगे शिव किरमच, जो एक कलाकार है, एक्टर डायरेक्टर है, पेश करेंगे नरेश शर्मा। संगीत की सभा जारी रहेगी, और कल शुक्रवार को आपको इंतजार रहता है कार्यक्रम आपकी फरमाइश का, जो दिन के 2 बजे आपके लिए हम प्रसारित करते हैं। जरूर सुनिएगा ये कार्यक्रम और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। 6 बजे भक्ति संगीत, 6:30 शाम में गजल, और 7 बजे रेट्रो हिट्स एपिसोड 4, शीर्षक होगा विश्वास। 8:30 हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर पेश करेंगे रमेश मराठा। कल की कड़ी है मिले जुले गीत। ये था विवरण कल के कार्यक्रमों का। आप अपना फीडबैक जरूर हमें भेजें हमारे स्टूडियो के नंबर पर 7056413010 पर। नंबर एक बार फिर 7056413010। इन्हीं सुरेले और देशभक्ति से ओतप्रोत जज्बातों के साथ अब रेडियो वितस्ता के आज के प्रसारण को यहीं समाप्त करने की अनुमति दीजिए। आज के इस पूरे सफर में आपके साथ बने रहिए टीम रेडियो वितस्ता और मैं भारत सोपोरी। आप सब स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, देश से प्यार करते रहिए और सुनते रहिए एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता हर दिन सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक। इस समय जोरदार बारिश हो रही है और साथ में हवाएं भी तेज चल रही है। अगर आप रास्ते में हैं, गाड़ी चला रहे हैं, आप बहुत ध्यान से गाड़ी चलाएं और आहिस्ता आहिस्ता अपने गंतव्य तक पहुंचे, क्योंकि घर पे सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। जल्दबाजी ना करें और यही हमारी आपसे अपेक्षा है और अनुरोध भी। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे ले रहा हूं इजाजत। कल 5:58 पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।